0: ये जो जीवन की लय है, सब कुछ पहले से ही तय है। इसलिए जय रघुनंदन, जय सियाराम।
1: श्री रामचंद्र आशीष पारिजात,
0: तुम्हें प्रणाम। आप सुन रहे हैं
1: सम

जय रघुनंदन, जय सियाराम। आप सुन रहे हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रेडियो का ये खास प्रोग्राम हमारे संग संगीता माल्या दुबई से। और जब राम जी

आप सुन रहे हैं पायो जीवनी राम रतन मोहन पायो प्रोग्राम राम रेडियो से डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये राम रेडियो है। आपकी आवाज आपकी पहचान है। आज की पायलट सिंगर

ऐसा ही सुख हमें मिला है इस प्रोग्राम को सुन के संगीता जी। पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। बहुत आभार इस प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट को सार्थक बनाने के लिए।

0: रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेतु दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल हैं, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्याशंकर

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठें खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठें खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाए तो एक चीज हमारे बीच स्वरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, एमडी त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मोंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्ति में प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना तो कोई आरंभ है और ना कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर भई अब

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप ले।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

खूब। दोस्तों, आदि शक्ति को सनातन, निराकार, परब्रह्म, जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार, जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास, नजरों से देखें तो कण कण में और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, आप सभी के जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा क्षण अवश्य आया होगा जब आपने अपने अंतर्मन के तार उस अलौकिक अदृश्य शक्ति से जुड़े हुए महसूस किए होंगे। कुछ ऐसे ही अनुभूति ये भजन सुनकर आपको अवश्य होगी, जिसे लेकर आ रहे हैं संजय गुप्ता जी।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मजरू सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए

वाह संजय जी, आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बहुत खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं।

0: वाह संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार।

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाए समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्कार।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

एक ऐसा सिंगर जो न केवल बॉलीवुड को पूरी तरह एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहा, बल्कि इस यूनिवर्स को एक ऐसी आवाज दे गया जिसको सुनकर हम ईश्वर, भगवान या अल्लाह की आवाज की कल्पना के नजदीक पहुंच जाते हैं। आज के इस एपिसोड में आवाज के इस सम्राट को अपना स्वर नमन दे रही थी अर्जुन रानू 16 और आपका साथ दे रहे थे अनिल शर्मा 1961। और अब आंखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत को इस मंच पर लेकर आए हैं अर्जुन रानू के संग सोनी शिवकुमार।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चू रानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ, और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुल रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चुल रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चुल रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मुनमुन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है, लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो जीवन की रीत है। ये जीवन है, जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस गीत में साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का फनी भूषण। और अब राजा रानी क्या कह रहे हैं अपनी सुरीली आवाजों में, किशोर फॉर यू आए हैं अर्जुन रानू के संग इस शॉर्ट वर्जन में।

राजा रानी की प्यार की कहानी हमने सुनी अर्जुन रानू और किशोर फॉर यू की जुबानी इस गीत में, और इस सुरीले से शॉर्ट वर्जन के साथ ही जयपुर रेडियो के इस मंच से मैं आरजे भूमिका आपको एक बार फिर बतला देती हूँ इस मंच के नंबर। हमारे नंबर हैं 9352-784-724। इस नंबर पर आप अपना सिंगिंग का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज की ये सुरीली सौगात सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग यहीं तक। आरजे भूमिका को विदा दें। नमस्कार।

बहुत शुक्रिया आरजे भूमिका। और इसके बाद अब आ गए हैं हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग, और अनुराग लेके आए हैं अपनी सुरीली आवाज में अपने गाए हुए कुछ गीत। आइए शुरुआत करते हैं, सुनते हैं आपका ये पहला गीत।

प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। और ये आवाज रही हमारे सुरीले सिंगर अनुराग की। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास एपिसोड। हमारे संग है अर्चुरानो 16 और अनुराग सिंगर के रूप में। आइए सुनते हैं अगला गीत अनुराग की आवाज में।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, और यदि गीतों से प्यार हो जाए, बेशुमार हो जाए, तो आप जयपुर रेडियो पर आ जाएं। यही कह रहे हैं अनुराग, हमारे आज के मेल सिंगर। आपकी आवाज, आपकी पहचान और बहुत सारे तकनीकी कारणों के वजह से हम अनुराग से यही अनुमति लेंगे और जारी रखेंगे प्रोग्राम। भूमिका आज के सिंगर अर्चुरानू के संग।
1: और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चू रानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुल रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चुल रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चुल रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मुनमुन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो जीवन की रीत है। ये जीवन है, जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस गीत में साथ दे रहे थे अर्चुदानु का फनी भूषण। और अब राजा रानी क्या कह रहे हैं अपनी सुरीली आवाजों में, किशोर फॉर यू आए हैं अर्चुदानु के संग इस शॉर्ट वर्जन में।

राजा रानी की प्यार की कहानी हमने सुनी अर्जुन रानू और किशोर फॉर यू की जुबानी इस गीत में, और इस सुरीले से शॉर्ट वर्जन के साथ ही जयपुर रेडियो के इस मंच से मैं आरजे भूमिका आपको एक बार फिर बतला देती हूँ इस मंच के नंबर। हमारे नंबर हैं 9352-784-724। इस नंबर पर आप अपना सिंगिंग का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज की ये सुरीली सौगात सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग यहीं तक। आरजे भूमिका को विदा दें। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, फिल्मों का नाम लेते ही हॉलीवुड और बॉलीवुड का नाम तुरंत जहन में आ जाता है। वैसे तो फिल्में 1940 से बन रही थीं, पर उनका सुनहरा समय 1970 से शुरू हुआ, जिसमें एक से एक हिट फिल्म्स रिलीज हुई, जैसे कि मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरा नाम जोकर, जीवन मृत्यु, सफर, आपकी कसम, लोफर, प्रतिज्ञा, कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, यादों की बारात, डॉन, शोले, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्म्स। ये वो फिल्में थीं जिनकी स्क्रीनिंग सालों तक चलती रहीं और जिनका संगीत आज तक अमर है। चलिए आज उसी दौर के कुछ यादगार नगमे सुनते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 1970 की एक फिल्म मेरे हमदम।

वाह, क्या खूबसूरत गीत पेश किया। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1970 की फिल्म जीवन मृत्यु से है, जिसमें धर्मेंद्र और राखी थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। आइए इसी फिल्म का प्यार भरा गीत सुनते हैं डॉक्टर आदेश और डॉक्टर तरुणा जी की मधुर आवाज में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1970 की एक सुपरहिट फिल्म सफर से है, जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर थीं। इस फिल्म का मतभरा संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने और खूबसूरत गीत लिखे इंदिवर जी ने। असित सेन को इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। आइए इसी फिल्म का एक मतभरा गीत सुनते हैं विद्या जी और बिस्वजीत जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूबसूरत गीत पेश किया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की एक सुपरहिट फिल्म लोफर से, जिसमें धर्मेंद्र और मुमताज थीं। इस फिल्म का मस्ती भरा संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। आइए इसी फिल्म का ये खूबसूरत गीत सुनते हैं मुकेश गुलानी और किशोर जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूबसूरत प्रस्तुति थी। फिल्म लोफर के गीत और संगीत बेहद मस्ती भरे थे, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी जी का जादू भरा हुआ था। आइए इसी फिल्म का एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या समा बांध दिया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1974 की एक और सुपरहिट फिल्म आपकी कसम से, जिसमें राजेश खन्ना और मुमताज थीं। इस फिल्म का झूमता हुआ संगीत दिया आरडी बर्मन जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने, जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म का संगीत उस साल का बिनाका गीतमाला की सरताज गीतों में भी था। आइए इसी फिल्म का एक मजेदार गीत सुनते हैं किरण नाडकर्णी और श्वेता सम्बासिवन जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1975 की फिल्म प्रतिज्ञा से है, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थी। इस फिल्म का मस्ती भरा संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी जी ये गाना गाते हुए नाच रहे थे और धर्म जी को बोले कि मैंने अपना काम कर दिया भाई, अब आगे आपका काम। इसी फिल्म से धर्म जी को उनका सिग्नेचर स्टेप भी मिला। आइए इसी फिल्म का ये मस्ती भरा गीत सुनते हैं संजय हारने और संजीव जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार प्रस्तुति थी। आइए अगला गीत सुनते हैं 1976 की मशहूर मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्म कभी कभी से, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, ऋषि कपूर और नीतू सिंह थीं। इस फिल्म का शानदार संगीत दिया खय्याम जी ने और गीत लिखे साहिर लुधियानवी जी ने, जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म को फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट मेल सिंगर, बेस्ट डायलॉग्स अवार्ड भी मिला। आइए इस फिल्म का एक गीत सुनते हैं मेरी और वरुण जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत सुनते हैं 1976 की फिल्म नागिन से, जिसमें सुनील दत्त और रीना रॉय थी। इस फिल्म का संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं तनुजा मुंद्रा और संजय गुप्ता जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूब गीत पेश किया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1978 की एक सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, जिसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा और राखी थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया कल्याण जी और आनंद जी ने और गीत लिखे अनजान ने। आइए इसी फिल्म का ये शानदार गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत सुनते हैं 1978 की एक और सुपरहिट फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, जिसमें शशि कपूर और जीनत अमान थीं। इस फिल्म का बेहद मशहूर संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं इंदिरा जी की मधुर आवाज में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूं कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूं।
1: दीदी देखो ना, मेरी स्किन कितनी रफ और ड्राई हो रही है, और ये पिंपल्स। लेकिन आपका फेस इतना ब्राइट और ग्लोइंग कैसे है?
2: देख छोटी, तुझे कितना समझाया था कि ये केमिकल्स वाले प्रोडक्ट मत यूज किया कर। देख मेरे पास है जादू JMD का एलोवेरा जेल, जो कि 100% आयुर्वेदिक है और स्किन की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है।
1: अरे वाह, अब तो ये जादू मेरे पास भी है।
3: JMD, the wonder of Ayurveda।
4: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का जगमगाता प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। आज हम भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक झिलमिलाता सितारा लेकर आए हैं, जो कि न सिर्फ अपने गीतों से बल्कि अपने काम से भी लोगों की जिंदगी में खुशियां भर देते हैं। जी हाँ, अपने श्रोताओं की मुलाकात करवा रहे हैं जयपुर के जाने माने सर्जन डॉक्टर मनीष कल्ला से। स्टूडियो में स्वागत है आपका मनीष।
2: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर रेडियो के डिजिटल स्टूडियो के अंदर आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये हमारी खुशनसीबी है मनीष। तो सबसे पहले हमें आप जयपुर के बारे में बताइए। आज के समय में ये शहर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग्स

0: अरे वाह, ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात बताई हमें। और इसी के साथ मनीष, हम आपका पहला गीत लेते हैं, क्या सुनवा रहे हैं हमें?
1: मेरी मदर का फेवरेट सिंगर थे मोहम्मद रफी साहब, उनका एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, आज की रात मेरे दिल की सलामी दे।
0: अरे
1: वाह, चूंकि मैं आया हूँ तो आप लोग मेरे दिल की सलामी।
0: जी जी जी जी, तो लीजिए आपका गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।

0: बहुत ही खूबसूरत सलामी आपके दिल ने दी हमारे श्रोताओं के लिए मनीष, मजा आ गया। तो पेशे से आप सर्जन हैं, बहुत ही बिजी लाइफ होगी आपकी। हम ये जानना चाहते हैं कि संगीत में आपकी रुचि कैसे बनी और इस शौक का आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों से तालमेल कैसे बिठाते हैं।
1: मेरी संगीत की रुचि जो है वो मेरी नानी जी की वजह से बनी। मुझे मेरी नानी जी और नाना जी ने पाला पोसा, तो क्योंकि उन्होंने पाला पोसा तो मेरी नानी जी जो थी क्लासिकल म्यूजिक टीचर भी थी और सिंगर भी थी, तो वहां से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उनकी कॉपी करते करते उनसे थोड़े बहुत गुर सीखते सीखते मैंने गाना शुरू किया। तो 5 साल की उम्र में जब स्कूल के अंदर मेरा पहला स्टेज प्रोग्राम हुआ उस वक्त मेरी नानी जी थी वहां पे, तो यहाँ से मेरा संगीत का सफर शुरू हुआ।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज आप हमारे पास स्टूडियो में आए हुए हैं तो हम इस बात का फायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए आप अपनी मीठी सी आवाज में कुछ यहीं पर दो लाइनें गुनगुना दीजिए अपने किसी भी पसंदीदा गीत का।
1: जी, ये अभिजीत जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, एक का दिल एक की धड़कन मूवी से।
0: जी जी।
1: रेशम जैसी है राहें खोले हैं बाहें ये वादियां। और अभी बरसात के मौसम में इससे बेहतर गाना और कोई होगा।
0: वाह मनीष वाह, आपकी सुर और ताल की समझ की दाद देनी पड़ेगी, आपने बेहद खूबसूरती से समा बांध दिया। तो हम अपने श्रोताओं को जल्दी ये गाना सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि अपने शौक का आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों के साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं।
1: संगीत एक ऐसी दवा है जो सारे तरह मर्जों का इलाज है।
0: जी,
1: तो जहाँ कभी भी मैं थक कर आता हूँ और परेशान सा होता हूँ तो यही एक जगह है जो मुझे बना देती है। आता हूँ, सुनता हूँ, गुनगुनाता हूँ, गाता हूँ, अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ। और इसी तरीके से मेरी जो टॉक्सिसिटी है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी।
0: जी जी।
1: व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर और लेस मेंटल हेल्थ, म्यूजिक एक सबसे अच्छी थेरेपी है जो सारी की सारी टॉक्सिसिटीज को निकाल कर आपको एकदम से तरोताजा महसूस करवाती है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से जो एप्स बनी है उससे बहुत मदद मिल रही है। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि इस म्यूल ऐप पर डॉक्टर मनीष कल्ला एक जाने माने सिंगर हैं और इनकी एक बड़ी स्ट्रांग फैन फॉलोइंग है वहाँ पर। तो इसी के साथ हम आपका गीत सुनवाते हैं।

0: बहुत खूब मनीष। आजकल सोशल मीडिया पर आता रहता है अक्सर कि कुछ डॉक्टर्स अपने मरीजों के इलाज के वक्त नाचते भी हैं, गाते भी हैं। कोविड के वक्त से शायद ये चलन शुरू हुआ, तो क्या आप भी अपने पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसा करते हैं?
1: ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल मुझसे किया, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर, और जब मैं जूनियर सर्जन हुआ करता था, तो
0: जी
1: ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं होता, ये तब से ही रिवाज था। गाने चलते रहते थे वहां पर, पुराने मोहम्मद रफी साहब के,
0: अच्छा
1: किशोर कुमार साहब के, और हम लोग गुनगुनाते रहते थे, हम लोग गाते रहते थे। उससे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद मिलती थी, और उसके साथ साथ जो कि सर्जरी का प्रेशर हम लोगों के ऊपर आ रहा है वो निकल जाता था दिमाग से। तो हम लोगों की तो ये परिपालना ये काफी लंबे समय से है, और आज की तारीख के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि संगीत जो है वो आपकी आत्मा को, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है।
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: उसी की वजह से आज की तारीख के अंदर म्यूजिक थेरेपी हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि पेशेंट को, और इस तरीके की चीजें आई हैं सामने जहां पर इवन कैंसर के मरीज तक म्यूजिक थेरेपी से उन लोगों का पेन काफी कम हुआ है। तो म्यूजिक बहुत ही अच्छा है मेंटल हेल्थ और पेन के लिए, इवन बच्चों के लिए भी। अगर आप जो है कुछ गुनगुनाते हैं तो उनको तुरंत से नींद आ जाती है, वो तुरंत से शांत हो जाते हैं। इट इज अ मेडिसिनल प्रेस्क्रिप्शन नाउ डेज।
0: क्या बात है, ये तो वाकई एक बहुत ही दिलचस्प बात आपने बताई है, और लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि संगीत का क्या इम्पोर्टेंस है हम सबकी लाइफ में। तो इन सभी दिलचस्प बातों से एक छोटा सा विराम लेते हैं और आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं।

0: मनीष कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे कोई खड़ा रहता है जो कि उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, उसे मॉरल सपोर्ट देता है। तो आप अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा और किसे देना चाहेंगे?
1: मैं सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को इस चीज का धन्यवाद देना चाहूंगा। महादेव का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं कोशिश करता हूँ महादेव की कई भी चीजों के ऊपर आचरण करने का।
0: क्या बात?
1: इसके बाद अगर मैं यहाँ पर पृथ्वी की कम बात करूँ तो मेरे नाना नानी का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया। मेरे अंदर जो भी वैल्यूज डाली गई उनके थ्रू डाली गई। एंड उसके बाद मैं मेरी माँ का, क्योंकि मेरी माँ अगर डॉक्टर नहीं होती तो मैं नहीं होता, ये बात मैं पहले भी बता चुका
0: हूँ।
1: और इन सारी चीजों के साथ साथ जिस एक और इंसान का जिसका मैं बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, वो है मेरी अर्धांगिनी ऋचा।
0: वाह, क्या बात है।
1: मेरे सपोर्ट में अगर वो नहीं खड़ी होती तो जितनी जगहों पर मैं बाहर गया, आज की तारीख में भी मैं अफ्रीका में हूँ, मैं अफ्रीका में सिर्फ इसीलिए हूँ कि कहीं ना कहीं उसने मुझे ये संबल दिया हुआ है, ये कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि नहीं आप वहाँ पर काम कीजिए, मैं यहाँ पर परिवार संभालती हूँ।
0: जी,
1: तो ये सारी चीजें, एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग वुमन, इट इज नॉट दैट शी इज नॉट अ वर्किंग वुमन, तो ये सारी की सारी चीजें, कई सारी जगहों पर उसने भी सेक्रीफाइस किया है, कई सारी जगहों पर मैंने भी सेक्रीफाइस किया, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली इफ शी हैड नॉट सपोर्टेड मी आई वुड नॉट हैव बीन।
0: बहुत ही आप धरती के साथ जुड़े हुए इंसान हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में मनीष जी बात यह है कि बहुत लोग कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही होते हैं जो वाकई श्रेय अपने परिवार वालों को देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर। तो हम और हमारे श्रोता चाहेंगे कि इन सब के लिए जिनको भी आपने श्रेय दिया है, आपकी अर्धांगिनी, आपकी मम्मा और आपके नानी नानू, उनके लिए आप एक गीत हमें प्यारा सा सुनवा दीजिए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष कल्ला। आपसे ये गुफ्तगू बहुत ही मजेदार रही। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए दो शब्द कह जाइए।
1: सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर आपके और आपके श्रोताओं के समक्ष खड़ा हूँ।
0: थैंक यू।
1: और श्रोताओं के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि संगीत गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात डॉक्टर मनीष कल्ला के साथ, जो कि जयपुर के जाने माने सर्जन हैं और फिलहाल साउथ अफ्रीका में किसी काम से वहां पर रह रहे हैं। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में उन्होंने आने के लिए अपनी मसरूफ जिंदगी से कुछ टाइम निकाला। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारे के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहे। रब राखा।

0: महफिले गजल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्ते, आदाब। सुनने वालों को लक्ष्मी का प्यार भरा सलाम। आओ झूमे गाये के जानिब, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आज के इस महफिल में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, जगजीत जी ने बेशुमार गजलों को अपनी रूह परवर आवाज से सजाकर हमेशा के लिए हयात जावेदा बख्शती है। ताहम कुछ अनमोल जवाहरात हैं जिनमें खूबसूरत शायरी, बेपना मौसीकी और अजीम पेशकश मौजूद हैं। उन्हीं नायाब मोतियों में से एक मोती यानी एक एल्बम को रेयर जेम्स का एजाज हासिल है। आज के महफिल के फनकार उसी एल्बम से कुछ चुनिंदा गजलों को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगी जनाब मनीष सूद जी को। वे हमारे लिए पेश करेंगे जब भी आती है तेरी याद, जिसके शायर हैं कृष्णा अदीब साहब। मनीष सूद जी।

वाह मनीष जी, आफरीन आफरीन, क्या खूब पेशकश थी। ये थे मनीष सूद जी अपने खूबसूरत अंदाज और गुदाज भरी आवाज में इस गजल को इन्होंने पेश किया। दोस्तों, हमने अभी अभी सुना था कि जब हमें और आपको किसी की याद आती है तो हमारी कैफियत क्या होती, लेकिन क्या आलम होगा जब वह शख्सियत आपसे रूबरू हो। ना मजा है दुश्मनी में, ना है लुत्फ दोस्ती में, कोई गैर गैर होता, कोई यार यार होता। तो चलो हम चित्रा सिंह जी की पुरसोस आवाज में पेश करदा दाग दहलवी की एक हसीन गजल को समाप्त करते हैं। जयपुर रेडियो के लिए इसे पेश करने आ रही हैं शोमा सी रॉय। अजब अपना हाल होता जो विसाल यार होता,

वाह, बहुत खूब शोमा जी, बेहतरीन पेशकश। दोस्तों, जब दो दिल एक दूसरे की चाहत में जज्बातों की आंधी से गुजरते हैं, वह जज्बा है इश्क। लेकिन जिगर मुरादाबादी साहब कहते हैं, जिंदगी न देख जलवाए आफताब बन, शौक को रहनुमा बना जर्रे में रोशनी न देख, क्योंकि इश्क फना का नाम है। इस खूबसूरत गजल को अपनी सुरीली आवाज में पेश करने आ रही हैं अनुराधा जी।

वाह अनुराधा जी, बहुत खूब। ये जयपुर रेडियो पर आपकी पहली पेशकश थी जिसे आपने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, आपका ये सफर यूं ही चलता रहे। दोस्तों, जनाबे जिगर मुरादाबादी ने ना सिर्फ उर्दू गजल को एक पहचान वो परवाज बख्शी, बल्कि शहनशाह तगज़ल का खिताब भी हासिल किया। इनकी एक मशहूर गजल जो इंसानी जज्बात व एहसासात को खूबसूरत अंदाज में बयां करती है, सुनते हैं इसे डॉक्टर अंकित अवस्थी की आवाज में। मुझे दे रहे हैं तसल्लियां जनाब अंकित अवस्थी जी।

वाह अंकित जी, सदा फ्री। दोस्तों, गजल एक ऐसा फन है जिसमें महबूब से बातें होती हैं। इश्क और मोहब्बत के जज्बात को लफ्जों में पिरोकर गुनगुनाया जाता है, साथ ही साथ गजल के जरिए शिद्दते गम का भी इजहार किया जाता है। इसमें टूटे हुए दिलों के लिए मरहम और मुदावा का भी सामान होता है। अब हम दावत देते हैं आशुतोष भट्ट जी को, ये पेश करेंगे कृष्ण अदीब जी की ये नज्म शहरों शहरों आज है तन्हा, जनाब आशुतोष भट्ट जी।

वाह आशुतोष जी, बहुत खूब, क्या कहने, आपने तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों, 19वीं सदी में मुगलिया सल्तनत का जाहो जलाल अब जवाल का शिकार हो चुका था। तभी दिल्ली उर्दू के अजीम शायरों का मरकज बन गया था, जिनके शहंशाह मिर्जा असदुल्ला खां गालिब थे। गालिब साहब न सिर्फ इश्को मोहब्बत और सोजो शराब की बातें करते थे, बल्कि जिंदगी की नशेब फराज के बारे में भी अपने ख्यालों और जज्बों का इजहार करते थे। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि उन्होंने तकरीबन आधी जिंदगी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपना मुकदमा पेश किया और सालों पेंशन की बहाली के लिए कानूनी चाराजोई करते रहे। और ये ऐसी शख्सियत थी जिसकी शायरी इस्तियारों से पुर थी। वह अपनी एक गजल में मजा से भरा एक कानूनी इस्तियारा यूं पेश करते हैं। फिर खुला है दरे अदालत ए नाज, गर्म बाजार ए फौजदारी है। तो चलिए सुनते हैं संजीव नागर जी की आवाज में इस बेहद खूबसूरत गजल। जनाब संजीव नागर जी।

0: वाह संजीव जी, क्या कमाल का फन आपने पेश किया है। दोस्तों, आज की ये हसी शाम जिससे हम सब सामाएं लुत्फंदोज हो रहे थे, अब मंजिल की आखिरी पड़ाव पर है। मैं लक्ष्मी बालचंद्रन अपने तमाम सुनने वालों और जयपुर रेडियो का शुक्रिया इस शेर से अदा करना चाहती हूँ। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। प्रस्तुत है प्रोग्राम बातें दिल की, और बातें दिल की लेके आई हैं सुषमा, और सुषमा के साथ है जाने माने नाट्य निर्देशक, लेखक और रंगकर्मी अशोक राही। इस प्रोग्राम के टेक्निकल निर्देशक हैं ओपी शर्मा।
2: नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कहते हैं जीवन बनता है पलों से, और कोई भी पल तब खूबसूरत हो जाता है जब उसमें कुछ खास बात हो जाए। ऐसी ही खास बातों से तो सजा है हमारा जीवन। तो हमारी बातचीत में हम तलाशेंगे अपने खास मेहमान के खास पल इन बातें दिल की। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थककर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। हफीज बनारसी की ये पंक्तियां हमारे आज के मेहमान की जीवन यात्रा या यूं कहे कर्म यात्रा पर सटीक बैठती हैं, जो पिछले 45 वर्षों से रंग कर्म से जुड़े हुए हैं और अपनी कला के रंगों से नित नई तस्वीर बनाकर सभी को आकर्षित करने का फन रखते हैं। राजस्थान के जाने माने नाट्य लेखक निर्देशक व्यंगकार श्री अशोक राही, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राजस्थान साहित्य अकादमी अवार्ड, सवाई माधो सिंह कला अवार्ड, बेस्ट थिएटर प्रमोटर अवार्ड हरियाणा, ऐसे बहुत से अलंकरण के अलावा दर्शकों के दिलों के प्यार को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए हर नए पल में कुछ नया रचने की कला के महारथी हैं। नमस्कार अशोक राही जी।
3: नमस्कार। नमस्कार सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
2: आपके दिल की बातें जानने का मौका आज हमारे पास आया है, तो लेके चलिए हमें अपने बचपन के शहर, घर आंगन में, और उस पल में जब आपके मन में ये विचार आया कि पहली बार कि कलम और रंगमंच आपके जीवन साथी बनेंगे।
3: असल में जैसा कि अक्सर होता है, कई बार हमारे जो बचपन में जो हमारी स्मृतियां होती हैं, बचपन में जो हम जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल का आदमी के ऊपर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। ये तो दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, और मुझे लगता है कि मेरे साथ भी यही हुआ। बचपन में मैं अपनी बुआ जी के साथ रामलीला और इस तरह हमारे शहर में, मैं आपको बताऊं कि मैं एक छोटा सा शहर है अलवर, उसका रहने वाला हूं, तो उस शहर में ये रामलीला होती थी, भर्तृ महाराजा भर्तृहरि नाटक होता था, तो बहुत चार पांच छह साल का था तब वो देखने जाते थे, तो उसका कुछ प्रभाव रहा होगा। और उसके बाद में ये संयोग की बात है कि मेरे पिता सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, हमारे सिनेमा हॉल थे राजस्थान में दो तीन, और मैं बचपन में मेरा जो खेलने का समय था वो ज्यादातर सिनेमा हॉल में बीतता था, कि स्कूल से आए अपना बस्ता घर पे पटका और जाके सिनेमा में बैठ गए। और ऐसा भी नहीं कि कोई पूरा सिनेमा देख रहे हैं,

0: थी शहीद, और उसके बाद में उपकार फिल्म आई उनकी। तो ये सारी फिल्में देखते देखते उनका संगीत, वो सारा माहौल हो सकता है कि वो मेरे दिमाग में रहा हो। और फिर कॉलेज के जमाने में जब मैं पढ़ता था, मैंने पहली बार मैं नाटक से जुड़ा। जी सुषमा
1: जी, तो नाट्य लेखन की यात्रा यूं कहें कि तब से आरंभ हुई जब आप कॉलेज में पढ़ते थे।
0: जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि नाट्य लेखन की यात्रा तब से शुरू नहीं हुई। नाटक के प्रति जो अनुराग है, कला के प्रति जो बात है दिल में कि ये कुछ है, कुछ करना चाहिए। वैसे मूलतः मैंने विज्ञान पढ़ी है, आपने भी विज्ञान पढ़ी है मुझे पता है, तो लेकिन विज्ञान के साथ साथ ये कला के इस क्षेत्र में फिर कुछ जीवन चला जाएगा ये उस समय नहीं सोचा था। मैं ऐसा कोई सोचता भी नहीं है मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा, अपन लोग कहते हैं कि बच्चे बचपन से ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक धारा होती है जो उस तरफ उसको ले जाती है, और वो अवचेतन की धारा होती है। जी सुषमा,
1: बहता चला जाता है उस धारा में। तो ऐसा ही जो असर आप पर फिल्मों में डाला या नाटकों ने डाला, वो आगे जाकर आपके जीवन से जुड़ गया। लेकिन उस समय शायद आपका भी यही मानस रहा होगा जैसे उस वक्त सोचते थे सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कि पढ़ ले और उसके बाद एक नौकरी मिल जाए। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मैंने ये किया कि अपना अपना जो जो ये नाटक का और अभिनय का और विशेषकर उस समय साहित्य का, साहित्य से जुड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू से ही बचपन से ही रहा। उस जमाने में बहुत साहित्य भी ऊंचे दर्जे का साहित्य पढ़ा, हालांकि ऐसा नहीं हो उस समय इब्ने सफी और ओम प्रकाश शर्मा और इनके उपन्यास भी, वेद प्रकाश कांबोज, इनके जासूसी उपन्यास भी बहुत पढ़े जाते थे। हम 10वीं 11वीं में थे, वो भी पढ़े, लेकिन
1: साहित्य ने आप पर असर डाला।
0: जी जी जी, और साहित्य भी, लिटरेचर भी पढ़ा। जी हाँ जी सुषमा,
1: तो नाट्य लेखन की यात्रा हमें बताएं कब से आरंभ हुई।
0: असल में नाट्य लेखन तो मेरा बहुत बाद में शुरू हुआ। शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत में हमारा शहर, मैं अपने शहर के की नाट्य उसके बारे में बताता हूँ, अलवर शहर की जो बात कर रहा हूँ।
1: हाँ।
0: वहां पर एक नाटक होता है, उस नाटक का नाम है महाराजा भर्तृहरि।
1: जी।
0: और वो कमाल का पारसी रंगमंच का, पारसी शैली का एकमात्र नाटक है जिसको अलवर शहर आज भी जिंदा रखे हुए है। वर्ष उस नाटक के दशहरे से लेकर दीपावली तक लगभग 15-20 प्रदर्शन होते हैं, और हर प्रदर्शन में कम से कम 8-10 हजार लोग उस नाटक को देखते हैं, टिकट से देखते हैं, टिकट खरीदते हैं। और अब तो मेरे ख्याल से उसका टिकट 500 रुपए इस तरह का है, हमारे जमाने में बहुत कम 1-2 रुपए का हुआ करता था। और वो नाटक एक पारसी रंगमंच की परंपरा को लेकर चल रहा है। तो ऐसे नाटक उस शहर में हमने, उस जमाने में मेरे दोस्त हुआ करते थे, दुर्भाग्य से अब वो नहीं रहे हमारे साथ, ईश मधु तलवार नाम के एक दोस्त थे, बलवंत तक्षक नाम के एक दोस्त थे, देव कुमार मुखर्जी नाम के एक दोस्त थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अपने शहर में एक आधुनिक रंगमंच की धारा शुरू की जाए। तो उसके दौरान हमने वहां पर सबसे पहले नाटक शुरू किए, और पहला नाटक हमने शुरू किया एक अनिल बर्वे नाम के एक बहुत बड़े मराठी के एक लेखक थे, और उस जमाने में 1980 में उनका एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक था, थैंक यू मिस्टर ग्लाड।
1: ओके।
0: बाद में उस नाटक के ऊपर फिल्में भी बनी, कालिया और दूसरी फिल्में, वो कमाल का नाटक था। उस नाटक को हमने अपने शहर में मंच एक और उस नाटक को, वो नाटक इतना सफल रहा, मेरे ख्याल से 1-2 हजार लोगों ने उस नाटक को देखा और बहुत बहुत पसंद किया। तो वो एक बुनियाद था नए रंगमंच की मेरे लिए भी, और मैंने उसको नाटक को निर्देशित भी किया था, हालांकि उस समय मैं बहुत युवा था, मन में बहुत डर भी था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि वो नाटक सफल रहा क्योंकि हमने उसको तैयारी करने में बहुत मेहनत की थी।
1: तो मेहनत आपकी रंग लाई।
0: जी,
1: और
0: जी।
1: ये जो मेहनत का दौर था ये शुरू हो गया आपकी जिंदगी में और जिंदगी का हिस्सा बन गया, और यही मेहनत आज आपको इस सक्सेसफुल यूं कहें कि एक मंच पर उसने खड़ा कर दिया है।
0: सुषमा जी, मैं एक मेहनत के ऊपर ही एक बड़ी जोरदार बात जो मेरे जीवन का अनुभव है ना, वो

0: अपने नए मित्रों को, सुनने वाले मित्रों को जो हमारा रेडियो सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन कमाल की बात है, वो ये है कि मेहनत गुमनामी में कीजिए, मेहनत गुमनामी में कीजिए, सफलता आपका शोर मचाएगी।
1: क्या बात, बिल्कुल।
0: अगर आप परिश्रम से जुड़े हुए हैं किसी भी कला से, कोई सी भी कला हो, मैं अपने नए साथियों को यही कहता हूं कि आप उसको मन से, दिल से प्रेम कीजिए उस कला को, और आप ये देखिए पूरा पूरा एक इतिहास है कला, कला क्षेत्र में इतिहास है, राजनीति में, साहित्य में, कि जो लोग मन से जुड़े वो सफल हुए।
1: तो नाट्य लेखन की यात्रा की बात हमने की, जिसकी शुरुआत अलवर शहर से हुई और फिर उसकी धूम जयपुर में मची और अब तो पूरे राजस्थान में इसकी धूम है, राइट? कौन सा वो वर्ष था जब आपका पदार्पण हुआ जयपुर में?
0: मैं जयपुर में आया था 1987 में, काफी बरस हो गए, अब तो कोई पूछता भी है कि कहाँ के रहने वाले हो तो मुंह से निकलता है जयपुर का रहने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ फिर बस जाता है आदमी का वही घर हो जाता है। हम वैसे तो हम राजस्थान के देश के, अब मैं तो सच्ची बात बताता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो पूरी जो यूनिवर्स है उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, क्योंकि कलाकार के लिए तो अब यही है, ये सारी देश दुनिया सब अपनी है, यही हमारी संस्कृति में भी यही कहा गया है कि अखिल विश्व हमारा घर है।
1: एक हास्य व्यंगकार के रूप में आपने प्रसिद्धि हासिल की है, खास तौर पे कहूँ कि ये आपका जॉनर रहा है जिस पर आप लिखते भी हैं और बहुत से नाटक आप मंचित करते हैं। इसके अलावा आपने पीपल्स मीडिया एंड थिएटर की शुरुआत की और उसके आप प्रेसिडेंट रहे हैं, ये ड्रामा ग्रुप ने शुरुआत की। राजस्थान पत्रिका में लगातार 20 साल तक व्यंगात्मक बातों से परिपूर्ण कॉलम लिखना और सबको हर दिन एक सोच दे देना कि हाँ इस पर सोचना बहुत जरूरी है, एक आम जन को, बात करामात के नाम से बहुत प्रसिद्ध रहा, इतनी चीजों के लिए ये इंस्पिरेशन कहाँ से आता है?
0: देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि लेखन हो या साहित्य हो, जो सारा उपजता है, और एक एक बड़ी दिलचस्प मैं आपको बात बताता हूँ, वो सृजन प्रक्रिया के बारे में है। मैं घासी गंगी की भी बात करूंगा लेकिन पहले सृजन प्रक्रिया की बात करूं। आप किसी भी लेखक से ये पूछिएगा कि आप लिखते कैसे हैं, मेरे ख्याल से इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, आप वो उत्तर दे ही नहीं पाएगा। और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कोई मुझसे पूछता है कि आपने इतना इतने बरस तक, 20 बरस तक हजारों लिखे हैं, प्रतिदिन लिखता था, कैसे लिखता था? मैं अब अपने लिखे हुओं को मैं स्वयं खुद पढ़ता हूं तो मुझको लगता है कि हे भगवान, क्या ये मैंने लिखा है? मैं यकीनन बात बता रहा हूं इसमें। अच्छा, एक इसको, इस बात को ही मैं दूसरी तरह से भी जोड़ के बताता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ ये कहा गया है, और ये धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि हमारे यहाँ जैसे वेद हैं, वो कहा गया है कि ये वेद ईश्वरीय रचना है। इसी तरह कुरान के बारे में भी यही कहा गया है कि वो ईश्वरीय रचना है, ईश्वर ने रचा है उनको, ये ऊपर से आई है नीचे। वेदों के बारे में भी यही कहा गया है, और यही बात बाइबल के बारे में भी कही गई है, वो ईश्वर के द्वारा रची गई रचना है जो आई है। मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं उसको उस तरह नहीं ले रहा जो एक धार्मिक परंपरावादी लोग रहते हैं, लोग लेते हैं। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि ये मनुष्यों के द्वारा रची गई है, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं कि उस मनुष्य को भी बिल्कुल पता नहीं होता जब वो अपना रचना लिखता है कि वो उसने कैसे लिख दी। एक बहुत बड़ी बात है, और आप चाहे इसमें गालिब को पढ़ लीजिए, कबीर को पढ़ लीजिए, वो सब, तुलसी को पढ़ लीजिए, वो अपनी रचना प्रक्रिया में ये बात जरूर कहते हैं कि हमें खुद को नहीं पता कि ये हमने कैसे लिख दी। हालांकि लोग उसको कहते हैं कि ये इन्होंने विनम्रतावश कही है, लेकिन वो बात विनम्रतावश नहीं कही है, वो बात बिल्कुल सच है।
1: जी,
0: इसको अंधविश्वास के रूप में न ले हम ये मेरा कहने का मतलब है कि आदमी के जीवन के अनुभवों का उसके जो निचोड़ होता है, जो वो सारी जिंदगी चीजों को देखता है, जो उसके मस्तिष्क में जाके पक जाती हैं और वो उस निकलती हैं
1: शब्दों के माध्यम से, फिर वो
0: शब्दों के माध्यम से
1: निकलती हैं। बिल्कुल,
0: वो निकलती
1: और कुछ ऐसा भी होता है कि हर दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है या हम कुछ ऐसा लोगों में देखते हैं, तो आपकी जो एक किसी को देखने की या किसी प्रक्रिया को समझने की शक्ति आपके अंदर होती है, तभी आप उससे कर पाते हैं, वैसा कर पाते हैं।
0: निश्चित रूप से। चलिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ सुषमा। आप वाणी से जुड़ी हुई हैं, बोलने के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, आप क्या अनेकों बार ऐसा नहीं होता है कि आप माइक्रोफोन के सामने हैं और उस समय आप बोल रही हैं और आपको अपने आप शब्द आपके सामने आते जा रहे हैं, अपने आप वाक्यों की बुनावट होती जा रही है, कैसे होता है?
1: हाँ, वो हमारे बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, सही कह रहे हैं आप। और हमारे भीतर से वो बात आती है, लेकिन वो जो भीतर बात समाहित हुई है वो शायद हमारे अनुभवों का ही सारा का सारा जो एक निचोड़ है वो हमारे भीतर होता है और वही हम सब तक पहुंचाते हैं। हमें जो एक्चुअल लाइफ में अनुभव हुए होते हैं हमारे आसपास के व्यक्तियों की वजह से या हमारे आसपास की परिस्थितियों की वजह से, वही बाहर आते हैं। वो आपका मानना बिल्कुल सही है।
0: अब देखिए, अब हास्य व्यंग्य पे आते हैं अपन। हास्य में या व्यंग्य में प्रतिदिन मुझको लिखना है, एक निश्चित समय पे लिखना है, अखबार छपेगा, चाहे मेरी तबीयत खराब है, चाहे मेरे घर में कोई खुशी है, चाहे मेरे बेटे का ब्याह है, चाहे ये है कि मेरी नानी का स्वर्गवास हो गया और मुझको, लेकिन मुझको लिखना है
1: जी,
0: क्योंकि अखबार आप इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि, तो आपको तो लिखना ही है। अब उस सारी प्रक्रिया के अंदर प्रतिदिन लिखो, और मुझको इस बात का गर्व है कि 20 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन मैंने वो ना लिखा हो
1: जी।
0: तो ऐसा थोड़ी हुआ कि मेरी जिंदगी में ये सारे जो होते रहते हैं ये नहीं हुए, लेकिन लेकिन एक नियमितता कि लिखना है तो वो लिखा। और अब बहुत सारे युवा मित्र पूछते हैं कि आपके आइडिया कहां से आते हैं
1: जी।
0: देखिए, ये भी मैं आपको बताता हूं, अगर मैं अपने दोस्तों से और विशेषकर आपके माध्यम से, अपने एफएम के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने दिमाग को, अपनी इंद्रियों को खुला रखेंगे, आंख को और कानों को खुला रखेंगे, तो आपको आइडिये कहीं से भी मिल जाएंगे। आप सड़क पे जा रहे हैं, आप बस में बैठे हुए हैं, आप कॉफी हाउस में कॉफी पी रहे हैं, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आपके घर में ही कोई कोई बुजुर्ग महिला आई है, वो अपने अनुभव बता रही है, आइडिया वहां से मिल जाएंगे आपको। आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं और वो ही सर्वश्रेष्ठ होंगे, और आप उनको फिर उस, अब ये क्षमता तो आप में होनी चाहिए कि उनको आप
1: ग्राह्य शक्ति होनी चाहिए, बिल्कुल करने की। कुछ ऐसे किस्से कहानियां कभी जीवन में जरूर हो जाते हैं और लेखक तो उन्हें कलमबद्ध कर देता है, मतलब ऐसे वाक्य जो आपके नजरिए को ही बदल डालते हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ आपकी जिंदगी में भी जो जिन्होंने आप पर असर डाला और बहुत बार आपकी जो एक सोच चल रही थी वो बदल गई, डायरेक्शन बदल गया?
0: देखिए, यहाँ पे मुझको कबीर याद आ रहे हैं, और कबीर ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है, और वो कहा है कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुभास। इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी इत्र फरोश के साथ बैठे हुए ही हैं, बेशक वो आपको इत्र देगा नहीं, लेकिन उसके साथ बैठने से उसकी जो खुशबू है इत्र की, उसके इत्र की खुशबू, वो तो आपके इर्द गिर्द मन रहेगी, वो तो आपको उल्लासित करेगी, आनंदित करेगी।
1: बिल्कुल,
0: संगत का बड़ा महत्व है सुषमा जी, आप किस संगत में बैठते हैं, अगर आप विद्वान लोगों की संगत में, विद्वानों का देखिए यहाँ विद्वानों का मतलब ये नहीं कि कोई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ
1: नहीं,
0: विद्वानों से मतलब एक जीवन के अनुभवों से पके हुए। जैसे बात करामात में मैं सबसे ज्यादा जो बातें लिखता था वो मेरी नानी की लिखता था, जो मेरी नानी ने बचपन में मुझको बातें करती थी, उसकी हरकतें कैसे बात करती थी। मैं सबसे ज्यादा बातें, एक मेरा दोस्त था राधे, वो नहीं रहा, वो बिल्कुल लेमैन था, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और उस राधे के साथ जो मैं बीतता था, वो बैठता था, उसकी बातें मैं राधे की बातें लिखता था, तो वो लोगों को बड़ी पसंद आती थी। वो कहती वाह वाह यार आप तो कमाल करते हो। तो ये मेरा कहने का मतलब है। जी
1: जी बिल्कुल। रंगमंच आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, या यूं कहूं कि मतलब जो आपकी लाइफ सेंटर्ड रही है वो रंगमंच को लेकर रही है, राइट?
0: इसी
1: रंगमंच को आपने बहुत महत्व दिया है और इसी क्षेत्र में आप अब बहुत सारे बच्चों को भी आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं अपने वर्कशॉप्स के द्वारा। ये जो रंगमंच होता है, इसका हमारे जीवन में किस तरह महत्व होता है, किस तरह आप जीवन यात्रा को जोड़ते हैं एक रंगमंच से?
0: देखिए मैं पुनः नई पीढ़ी को एक दिलचस्प छोटी सी कुछ कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ। वो उनको बहुत याद रखना चाहिए। एक छोटे से चार लाइनें हैं, किसी शायर ने लिखा है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, तुम भी संभाले हो गिरती हुई दीवारों को अब वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है।
1: बहुत खूब।
0: ये बुजुर्गों की निशानी को संभालना, यहां बुजुर्गों की निशानी का मतलब ये नहीं कि हम उनके घर को संभालें, हम वो जो रिवायत है, जो संस्कार है हमारी, जो हमारे पीढ़ियों से हमारी संस्कृति में है, इन संस्कारों को संभालना। और थिएटर में भी यही है। देखिए थिएटर हमारे यहाँ सबसे, सारे विश्व में सबसे पुरानी जो परंपराएं हैं वो हमारे देश में मिलती है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, जो हजारों बरस पहले की है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनान के अंदर भी सैकड़ों साल पुराना रंग, हजारों बरस पुराना रंगमंच है, लेकिन हमारी परंपरा यूनान के जो रंगमंच है, यूनानी रंगमंच से भी पहले की है। और पश्चिम में तो स्टैनलिवस्की वगैरह, वो तो 19वीं सदी के लोग हैं वो तो
1: जी,
0: बाकी जो कुछ है। तो इस परंपरा को जो हमारे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, उस परंपरा के अनुसार अपना नाटक करना। और मेरा उद्देश्य यह है कि नई पीढ़ी को मैं यही सिखाता हूं। बहुत छोटी छोटी बातें उन्होंने, और उन्होंने तो नाट्यशास्त्र पढ़ने में तो आदमी की सारी जिंदगी गुजर जाए तो भी वो उसको नहीं समझ सकता। इतनी सारी बातें उन्होंने इतने बारीक ढंग से लिखी गई हैं, वो पता नहीं भरत मुनि एक थे या कई पीढ़ियों ने वो लिखा है, इस बात की दूसरी बात है। नई पीढ़ी को मैं ये समझाना चाहता हूं कि नाटक जो एक ऐसी कला है जिसमें सारी कलाएं समाहित हैं। देखिए नाटक में संवाद अदायगी, बोलने की कला है, नृत्य है, अंग संचालन है, नाट्य तो है ही उसके अंदर, इसके अंदर संगीत है, नाट्य संगीत, मनोविज्ञान है, सामूहिकता है। किसते नाटक कोई का आदमी नहीं कर सकता, नाटक के लिए बड़े एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है
1: जी,
0: वो एक समूह की। और ये सारी की सारी चीजें जो मैनेजमेंट है, जिसको सिखाया जाता है, जिसको लाखों 10 लाख रुपए फीस होती है अच्छे कॉलेज में MBA की फीस, ये कि ये बातें वहां पे भी सिखाई जाती हैं। वो ठीक है, वो एक व्यवस्थित रूप से उनकी एक भाषा है, उनकी एक थ्योरी है, उनका एक सब कुछ है, लेकिन नाटक में भी वही चीजें सिखाई जाती हैं। नाटक में अनौपचारिक ढंग से सिखाई जाती है, नाटक में उसको कलात्मक ढंग से सिखाई जाती है। और यही कारण है कि पिछले दिनों सुषमा जी अलग अलग डिसिप्लिन के जो बच्चे मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं वो बच्चे, जो बच्चे MBBS कर चुके हैं वो बच्चे, ऐसे बच्चे जो PhD कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो आर्किटेक्चर में आर्किटेक्ट बन गए वो, और बहुत सारे ऐसे बच्चे कि जो अपना भविष्य ही इस कला माध्यम में तलाशते हैं कि हमको तो मुंबई जाना है और अभिनेता बनना है
1: जी।
0: तो ऐसे सैकड़ों बच्चे मेरे जीवन में, सैकड़ों तो हो सकता है कि 1000 के आसपास संख्या हो गई हो, क्योंकि हर बस 50-60-100 बच्चे आ जाते हैं, तो हजारों बच्चे मेरी जिंदगी में आए। और वो देखिए, मैं एक बात और बताता हूँ सुषमा जी, कि कोई जरूरत नहीं है कि आप उस कला को अपनी जीविका का भी साधन बनाए, कोई सी भी कला हो, चाहे संगीत की कला है। मैं आपकी बात करता हूँ, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपने भी शुरुआत संगीत से की थी ना
1: जी,
0: गायिका थी आप, प्रसिद्ध गायिका रही थी आपने, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी जीता है
1: जी।
0: लेकिन वो सारी चीजें मनुष्य के काम आती हैं और उसके जीवन को एक अच्छा बनाने में, एक जिसको कहते हैं प्रफुल्लित करने के अंदर, ये सारी कलाएं काम आती हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप नाटक से जुड़े, आप बोलने से जुड़िए, आप पेंटिंग से जुड़िए, आप नृत्य से जुड़िए, आधुनिक नृत्य कीजिए। कोई वो ऐसा नहीं है कि आप भरतनाट्यम या कथक या कथकली करेंगे, आप जो आधुनिक नृत्य है उसकी जो कोरियोग्राफी आजकल करते हैं उससे जुड़िए।
1: यानी आर्ट को अपनी लाइफ में एक वो इम्पोर्टेंट जगह देनी बहुत जरूरी है।
0: निश्चित रूप से जी हाँ।
1: और जिंदगी के जो चैलेंजेस होते हैं, मुझे लगता है एक आर्टिस्ट उन्हें बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है ये भी हमें रंगमंच बहुत अच्छे से बखूबी सिखा देता है। अब बात करते हैं कुछ मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स की। आपके बहुत से प्रोजेक्ट्स रहे हैं, रेडियो में आपने बहुत कमाल का काम किया है, रंगमंच तो किया ही है, तो कुछ ऐसे पल जब आपको वाकई गर्व हुआ हो और अपनी टीम पर गर्व हुआ हो, अपने जो भी आपका कार्य रहा उस पर गर्व हुआ हो, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जो सभी को बताना चाहेंगे।
0: जी, मैं दो तीन बातें बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ा युवा पीढ़ी के लिए और नौजवानों के लिए, किसी के लिए भी, एक दो बातें मैं जो कहना चाहता हूँ वो एक है कि खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, बदलते वक्त में कुछ अपना इख्तियार भी रख, कुछ काम अपने लिए भी छोड़ मेरे प्यारे दोस्त। भगवान के भरोसे मत रह, जो करेगा भाग्य करेगा, जो होगा ईश्वर चाहेगा वो होगा, वो तो होता ही है, चलो ठीक है मान लिया उसको भी, लेकिन जब आप खुद उसमें नहीं लगेंगे। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूँ, मैंने एक नाटक किया जिस नाटक की अवधि थी 10 घंटे, रामचरित नाट्य।
1: बिल्कुल,
0: 10 घंटे, ये आमतौर से हम 1-1.5 घंटे का नाटक करते हैं, उस नाटक को हमको तैयार करने में लगभग 3 महीने लगते हैं, 90 दिन में एक नाटक तैयार होता है। बड़ी प्रक्रिया है नाटक की तैयार करने की, क्योंकि एक सामूहिक विधा है। 10 घंटे के नाटक को तैयार करने में, उसकी तैयार करने में मैंने कम से कम 8 महीने तो उसकी स्क्रिप्ट पे काम किया, दुनिया भर की किताबें पढ़ी, दुनिया भर की मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, रामचरित मानस पढ़ी, राधेश्याम जी की रामायण पढ़ी, मेहोजी गोदारा की रामायण पढ़ी, एक दक्षिण की एक बहुत बड़ी संत है उनकी रामायण पढ़ी, ऐसे कम से कम 10 रामायणों का पाठ किया, उनमें से प्रसंग निकाले, उनमें से निकाल के और फिर एक स्क्रिप्ट तैयार की
1: जी।
0: परंपरागत रामायण जो चलती है उसकी स्क्रिप्ट में निकलवा के लाया अपने दोस्तों से और उनको मिला के एक नाटक, 10 घंटे का नाटक हुआ, जिसमें नृत्य भी था, जिसमें संगीत भी था, और वो हमने जवाहर कला केंद्र में किया, जवाहर कला केंद्र के साथ मिलके, और लगातार 2 वर्षों से कर रहे हैं,
1: हजारों लोग
0: जी 5 घंटे जी।
1: आपका खेजड़ी की बेटी मुझे याद आ रहा है, जिसके मतलब पता नहीं अनंत शोज आपने किए हैं जगह जगह पर।
0: छेछड़ी की बेटी की भी यही प्रक्रिया रही। छेछड़ी की बेटी जब नाटक तैयार किया, इसका भी मैं दिलचस्प बताता हूँ कि मेरे एक मित्र थे श्री डीएन शैली साहब, वो नहीं रहे, मरहूम डीएन शैली साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक ये घटना है कि राजस्थान में 363 लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान किया था। ये बात मैं बताता हूँ आपको, 1990 के आसपास की बात है, 90-91 की। और ये नाटक तुमको लिखना है, क्योंकि मैं शैली साहब के लिए बच्चों के नाटक लिखता था, वो मुझसे लिखवाते थे और वो मंचित करते थे। उन्होंने कहा ये नाटक लिख। एक आईसी श्रीवास्तव साहब एक बहुत पुराने आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, शिक्षा कर्मी बोर्ड के उन दिनों अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर नाटक लिखवाओ
1: जी।
0: वो नाटक का मैंने उस पढ़ा तो उसके बारे में इधर उधर सुना, पता था भाई 363 लोगों ने बलिदान किया है, तो मैंने एक छोटी सी सिनॉप्सिस बनाई और डीएन शैली साहब को दे दी। मैंने कहा यार ये घटना है। डीएन शैली साहब ने उसको पढ़ा, फिर व्यंग से मुस्कुरा के कहा कि यार ये तो कोई बात नहीं है, ये तो क्या क्या है, ये तो तुमने कुछ मेहनत ही नहीं की, इधर उधर से किया। ये बात मुझको बहुत चुभी मन में।
1: अच्छा,
0: मैंने कहा यार ये तो मतलब जो चालू, जिसको कहते हैं चालू माल, अशोक रही ये तो बहुत तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैंने शोध करना शुरू किया। प्रोफेसर हीरा लाल जी माहेश्वरी राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय और जाम्बोजी के ऊपर पीएचडी की थी, उनके 2 वॉल्यूम थे, कम से कम 1000 पृष्ठ
1: जी
0: किताबें थी बड़ी बड़ी। वो किताबें मैं लाया, फिर मैंने ये सोचा, ये लगा कि उस समय जो मारवाड़ था, ये घटना जोधपुर के में खेजड़ली में हुई थी ना, तो मारवाड़ का इतिहास क्या रहा होगा, उस समय देश की राजनीति क्या कर रही होगी। तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं मारवाड़ के, उनकी पुस्तकें हैं वही 1000 पृष्ठ मारवाड़ का इतिहास, वो मेरे मित्र से लाया। और तो इसके अलावा मेरे मित्र श्री तुलसीराम जी माजू जो बिश्नोई हैं, हेतराम जी बिश्नोई, कर्नल बिश्नोई, ऐसे कई बिश्नोई मित्रों के घर गया, उनसे पूछा कि क्या आपकी वैल्यूज हैं, क्या आप पहनते हैं, क्या क्या ये घटना है, कौन लोग थे जो 363 लोग जो मर गए। तो उन्होंने मुझको एक सूची दी कि ये 363 लोग मरे थे
1: जी।
0: और उन सबको मिला के उनका गहन अध्ययन करके मैंने एक नाटक लिखा, और वो नाटक की अवधि मात्र 1 घंटा 20 मिनट
1: जी।
0: लेकिन उस 1 घंटे 20 मिनट को नाटक को तैयार करने में मुझे तो महीनों लगे और हजारों प्रश्न पढ़ने पड़े, तो वो नाटक तैयार हुआ।
1: लेकिन आप वो मेहनत रंग लाई,
0: इतनी रंग लाई कि पूरे देश में वो जब जहां जहां मैंने नाटक खेला, 20-20 हजार लोगों के बीच में खेला तो उनको उन्होंने पसंद किया, इंडिया इंटरनेशनल में खेला 400 लोगों के बीच में जो देश के बिल्कुल सुपर इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्होंने वो पसंद किया, मंत्रियों के बीच में खेला राज्यपालों ने पसंद किया, सामान्य जन में खेला उन्होंने पसंद किया। उसका कारण ये था कि एक तो वो घटना, दूसरा उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी जबरदस्त हो गई, और सुषमा जी आप यकीन नहीं करेंगे उसके बाद में बिश्नोई संप्रदाय के तो लोग ही मुझको आके बताने लगे कि ये घटना ऐसे हुई थी, जबकि वो पूरी तरह घटनाक्रम मैंने अपने हिसाब से नाटकीय तरीके से बनाया था, लेकिन वो इतना विश्वसनीय हो गया। ये कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूं ना, वो अध्ययन के साथ उसमें अपनी कल्पनाशीलता जब तक नहीं करेंगे, एक लेखक का यही सृजन है। अब कोई मुझसे पूछता है कि नाटक तुमने कैसे लिखा, तो मैं यही बताता हूं, बाकी वो ये है कि तो जाम्बो जी ने, गुरु जम्बेश्वर ने और अमृता देवी ने लिखवा लिया, वरना मैं कौन होता हूं। ये नाटक तो उन्होंने लिख दिया जो 300 बरस पहले ये बलिदान कर गए, एक्चुअली नाटक तो ये उन्होंने लिखा है।
1: बिल्कुल, लेकिन आपकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि कितनी चीजों का समावेश होता है जब एक कृति को तैयार किया जाता है।
0: इसमें कोई दो राय नहीं है सुषमा जी। जी
1: एक नाटककार के रूप में आप आज जो अपना आसपास का दौर देखते हैं, लोगों को देखते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स से आपका काफी आप रूबरू होते हैं, है ना, अपने आर्ट को उन तक पहुंचाते हैं, तो क्या सोचते हैं आप, क्या बदलना चाहते हैं आज के वक्त में अगर आप नजर डालें तो?
0: नहीं देखिए, ये भी एक बात है, कोई भी लेखक अगर ये सोच के करेगा कि मैं पूरे समाज को बदल दूंगा तो ये उसका रवैया ठीक नहीं, इसमें उसमें उसमें उसका अहंकार बोलता है। तुलसीदास जी ने जब रामचरित मानस लिखी थी उस समय कतई उनका मंतव्य नहीं था कि मैं कोई समाज को सुधारूंगा, वो उन्होंने एक भाव से लिखी थी। कबीर ने जो दोहे लिखे वो अपने मन के भाव से लिखे, मीरा के जो पद हैं, मीरा का जो प्रेम का है, उन्होंने मीरा ने ये थोड़ी सोचा कि मैं इस तरह समाज में प्रेम का प्रसार करूंगी, ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जिस तरह से होता हूं, लेखक को ईमानदारी से अपने काल को देखते कि मेरे समय में क्या चल रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जब मैंने खेजड़ी की बेटी नाटक लिखा तो उस समय जो उसका राजनीतिक पोर्शन है वो लिखा, तो उस समय राजनीति में क्या था कि 2 साल में कम से कम 6-7 बादशाह वहां बदल गए थे दिल्ली में, मोहम्मद अजम और जयफरखुशी और जरदार शाह, और 6-6 महीने एक एक साल रह के। और संयोग की बात है, जब मेरा यह नाटक लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश में भी ये हो रहा था, पहले चंद्रशेखर वो राजीव गांधी थे, फिर चंद्रशेखर बने, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, फिर इंद्र कुमार गुजराम, यानी के साल 6 महीने में 5 प्रधानमंत्री हमारे देश में भी बदल गए।
1: अच्छा,
0: अब ये देखिए, ये कोइंसिडेंट है क्या है कि, लेकिन कैसे वो 300 बरस पहले की राजनीति और उस समय की राजनीति बिल्कुल यूं की मिल रही थी, लोगों ने उस समय तो एकदम जोड़ा कि अरे यही तो हो रहा है, वहां पे बादशाह बदल रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। आपको ध्यान होगा उस काल में हमारे देश में कितनी जल्दी प्रधानमंत्री बदले थे।
1: जी जी जी,
0: कुछ घटनाएं कुछ होती है। अच्छा, आज भी आज कोई नया लेखक है वो कोई लिखना चाहे, मैं कहता हूं उस समय देखिए कैसा हमारे समाज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, विशेषकर महिलाओं को लेके क्या प्रॉब्लम, कितने मतलब जिसको कहते हैं कि हम क्या, मेरे शब्द समझ में नहीं आ रहा है, में दिखावटीपन हमारे समाज में आ गया है, जिंदगी में सारे दौरों में आ गए, कितने क्या हम इतने सहज हैं जैसे हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी हुआ करते थे। आप देखिए, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ब्याह शादी हमारे घरों में, अब मैं देश के सेठों की बात नहीं कर रहा, मैं तो हमारे घरों की बात कर रहा हूं, हमारे घरों में जो आजकल शादियां होती हैं, अरे बाप रे कितना दिखावटीपन आ गया उसमें, जबकि हमारे जमाने में 50 बरस पहले जो शादियां होती थी कैसे सहजता से शादियां होती थी। ये छोटी छोटी चीजें हैं ये लगती हैं, ठीक है पैसा आया है, कैसे खाने पीने की चीजें बदल रही हैं, कैसे संस्कार, आप देखिए समाचार पत्रों में जब हम खबरें पढ़ते हैं और विशेषकर बच्चियों को लेकर जो खबरें आती हैं, दिल नहीं टहल जाता है?
1: बिल्कुल।
0: आप एक लेखक का ये अपने आप दायित्व बनता है और अपने आप उसको वो लिखता है और लिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिखा जा रहा, लिख रहे हैं। ये जो सामाजिक ढोंग है, राजनीतिक ढोंग है, अभी मैंने नाटक किया जो मुंबई के लेखक अनुरोध शर्मा उनका लिखा हुआ बनफूल की बत्ती गुल, पूरी राजनीति का ऐसा वो है कि एक राजनेता कैसी कैसी हरकतें कर रहा है उसमें और उसकी आत्मा बदल गई, वो बड़ा एक दिलचस्प नाटक है, वो अभी पिछले दिनों ही शो किए थे उसके। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये चीजें रचनाकार के की रचनाओं में अपने आप आते हैं, उनको हास्य से प्रकट कीजिए, आप व्यंग के साथ प्रकट कीजिए, लोग आनंद लेते हैं, लेकिन उस चीज को वो दिल पे लगती है उनके, ऐसा नहीं है, वो सोचते हैं कि यार ये गलत है तो गलत है। जी सुषमा जी,
1: अशोक राही जी ने वैसे तो बहुत कुछ अभी तक अपनी जीवन यात्रा में पाया है, लेकिन ऐसा होता है कि बस जीते जीते हमारे जो सपने हैं वो बदलते रहते हैं, तो ऐसा कोई सपना जो अभी भी बाकी है आप देखते हैं और उसे यथार्थ का स्वरूप देना चाहते हैं?
0: मुझे गालिब जी हाथ दिला दिया, गालिब जी लिख के गए कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
1: हर ख्वाहिश पे दम निकले,
0: बहुत निकले मेरे अरमाफ लेकिन फिर भी कम निकले।
1: तो कुछ ना कुछ छूट जाता है,
0: निश्चित रूप से छूटता। एक आदमी अपने अपने जीवन में क्या कर सकता है, एक कितना लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, वो हमारी परंपरा में, हमारे देश की परंपरा में ही, हमारे यहाँ पे कोई रचना, महान रचना गुरु शुरू करता था लिखना, और गुरु अपने पूरे जीवन में लिखता रहता था, और उसके बाद में उसका जीवन कम पड़ जाता था तो उसके शिष्य उसको लिखते थे,
1: पूरा करते थे। जी
0: पूरा करते थे, और मजे की बात कि वो अपना नाम भी नहीं देते थे उसमें, शिष्य नाम गुरु का ही चलता था। महाभारत जैसी महान रचनाएं जिसमें 100,000 श्लोक हैं, नाट्य शास्त्र जैसी रचनाएं, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है
1: जी,
0: ये बड़ी लंबी परंपरा है, ये परंपरागत तरीके से लिखी हुई चीजें हैं, ये तय है। लेकिन नाम वेद व्यास जी का ही है, और बाकी लोग पूछते भी नहीं है और कहते भी नहीं, और शिष्य भी नहीं कहते थे हमारे। देखिए आज भी लोक के अंदर ये परंपरा चलती है, जैसे एक भगत नाम के एक मान लो लेखक हैं जो लोक गीत लिखते हैं, तो उनके जो शिष्य है ना वो भी भगत नाम से लिखेंगे। और इस परंपरा को कहते हैं भोग लगाना
1: जी,
0: जैसे अपने आते हैं ना शब्द आते हैं कि बीच में गजल के अंत में शायर का नाम आता है, ऐसे वो अपने गुरु का नाम ही उस रचना के अंत में लिखते हैं
1: जी।
0: कबीर के नाम से ऐसी हजारों रचनाएं समाज में घूम रही हैं जिनमें कबीर, कबीरा कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर ने लिखी है लेकिन कहत कबीर सुनो, अगर मान लो उनका कोई अनुयायी है तो वो भी यही लिखेगा कहत कबीर सुनो भाई साधु। ये ऐसा डेडिकेशन, ऐसी ऐसा समर्पण, ऐसी परंपरा, ये हमारी हमारी परंपरा में मिलती है, हमारे देश की साहित्यिक परंपरा में। जी
1: बिल्कुल, हम आपकी जो डेडिकेशन है उसको भी सलाम करते हैं और चाहेंगे कि जो भी यंगस्टर्स हैं जो आप ही के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं, ऐसा सपना देखते हैं, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे और क्या कुछ बातें हैं जो उनके साथ, क्योंकि आप शेयर करते ही रहते हैं अपनी वर्कशॉप्स के जरिए, उन नए नए बच्चों को बहुत सारा इंस्पिरेशन देते रहते हैं, तो आज क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, वो सुन लीजिए कि इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देंगी, इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देंगी, रात जंगल में कोई शम्मा जलाने से राह। आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। बुद्ध कह के गए थे, बुद्ध जब मरने लगे तो उनका जो शिष्य था, जो उनका भाई भी था चचेरा भाई आनंद, 40 बरस तक उनके साथ रहा था, वो रोने लगा और कहने लगे कि तथागत आप जा रहे हैं हमारा क्या होगा, तो तथागत ने कहा कि अप दीपो भवे, अपने दीपक खुद बनो
1: जी,
0: नई पीढ़ी को अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो परंपरा है, अपने गुरु हैं, जो अच्छा लिखने वाले हैं, जो अपने बुजुर्ग हैं, उनसे नहीं सीख सकते, सीखिए उनसे, वो तो सबसे बड़े आपके साथी हैं, लेकिन अंत में आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही सीखना पड़ेगा। और मैं इस बात को उस तरह ना लिया जाए, खुद शिताई में ना लिया जाए, लेकिन मेरा तो नाटक में कोई गुरु ही नहीं रहा कि जिससे मैंने सीखा हो। लेकिन यूं देखते हैं तो हजारों दत्तात्रेय की तरह हर वो साथी, हर वो गलती मेरी गुरु थी, हर नया साथी मेरा गुरु होता है जो एक नई तरीके से एक्टिंग करता है, और वो बात ही बातों में एक ऐसी बात कह जाता है कि जो दिमाग के एकदम एकदम खोल देती है, प्रकाश लग जाता, अरे ये बच्चा तो ऐसी बात कर रहा है। तो सीखने का जो जज्बा है ये सबसे बड़ी बात है सुषमा जी।
1: सीखने की प्रक्रिया अनंत चलनी चाहिए, जीवन पर्यंत चलनी चाहिए, यह शुक्राई जी का मानना है और उनके साथ भी यही चल रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आपका जो ये हसीन सफर है वो यूं ही चलता रहे। बहुत सारे माइलस्टोन्स अभी आपने क्रिएट किए हैं, लेकिन और भी करें जिनको देखकर हम इंस्पायर हो, नए बच्चे इंस्पायर हो और बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ समझें।
0: बस सबसे बड़ी बात है मित्र अच्छे होने चाहिए, समझदार होने चाहिए। आप सरीखे व्यास जी जैसे ऐसे मित्र हों तो फिर तो कहना ही क्या है, आदमी अपने आप आगे बढ़ेगा।
1: तो अशोक राय जी, आपका हम दिल की बातें जो आपने हम सभी के बीच रखी हैं आज, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।
0: मैं भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से मैंने भी बड़े खुले दिल से अपनी जो भी मेरी समझ है जीवन की वो आपके सामने रखी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हरिशंकर व्यास जी का और साथ ही ओपी शर्मा जी का। थैंक यू सो मच।
2: आप सुन रहे थे प्रोग्राम बातें दिल की, और दिल की बातें कर रही थी अशोक राही के साथ सुषमा। टेक्निकल निर्देशन रहा ओपी शर्मा का, और अब डॉक्टर गाथा के सुरीले गीतों की बात।

सुनेगा खेल भुज में लत लपट लपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग भोर कर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

गीत सुहाने आप सुन रहे थे डॉक्टर गाथा मोहंती की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आज का ये सुहाना सुरीला सफर यहीं तक। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।

तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले किम, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। सभी का मूड्स ऑफ रफी प्रोग्राम में मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रफी जी ने हर तरह के गाने गाए हैं, चलिए उनके कुछ प्यार भरे रोमांटिक गीत सुनते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 1967 में रिलीज्ड फिल्म शागिद से, जिसमें जॉय मुखर्जी और सायरा बानू थी। इस फिल्म का सदाबहार म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, जो आज तक तरोताजा है। इसी फिल्म का एक सदाबहार रोमांटिक गीत सुनते हैं जिनी और डॉक्टर शरद की आवाज में।

वाह, क्या बेहतरीन गीत पेश किया। अगला गाना सुनते हैं 1968 में रिलीज्ड फिल्म हसीना मान जाएगी से, जिसमें शशि कपूर और बबीता जी थीं। प्रकाश मेहरा जी की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म का सदाबहार म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी ने, जिसमें मोहम्मद रफी जी और लता जी के गाए हुए गाने बहुत फेमस हुए। ऐसा ही एक मधुर और बेहतरीन गीत सुनते हैं डॉली जी और संजय जोशी जी की आवाज़।

वाह, क्या बेहतरीन गीत पेश किया, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं 1963 में रिलीज्ड फिल्म हमराही से, जिसमें राजेंद्र कुमार और शोभा खोटे थे। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने, जिसमें प्लेबैक किया मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी जी जैसे सिंगर्स ने। आइए इसी फिल्म से एक डुएट सुनते हैं, श्वेता जी और संतोष खेरे जी।

0: बहुत खूब, चलिए अगला गाना सुनते हैं 1962 में बनी फिल्म दिल तेरा दीवाना से, जिसमें शमी कपूर और माला सिन्हा थी। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी, लता जी और आशा जी जैसे कलाकारों ने। ऐसे ही फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं प्राची और सुबोध जी की मधुर आवाज।
1: पिछली की रात

क्या मधुर गीत पेश किया, बहुत खूब। अगला गाना सुनते हैं 1961 में बनी फिल्म जंगली से, जिसमें शम्मी कपूर और सायरा बानो थी। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी और लता जी ने। चलिए इसी फिल्म का एक मधुर ड्यूएट सुनते हैं, सविता जी और अमित पाठक जी की मधुर आवाज में।

वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। अगला गाना सुनते हैं 1958 में रिलीज्ड फिल्म काला पानी से, जिसमें देवानंद और मधुबाला जी थीं। इस फिल्म का सदाबहार संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी जी और आशा भोंसले जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं सचिन और प्रनीति जी के मधुर स्वरों में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, कहीं ना जाइएगा, रफी जी के मधुर गीतों का सिलसिला अभी जारी है।
1: रफी सोलफुल, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट दिया गया है मुझे। सोलफुल यानी कि रूहानी गाने, वो गाने जो दिल को छू जाएं, चाहे वो दर्द भरे गीत हों, गजल हों, चाहे रोमांटिक हों, चाहे शरारती हों। रूहानी संगीत हमारी रूह की गहराइयों में पहुंचकर हमारी रूह कभी गमगी कर देता है, कभी प्योर लव का एहसास दिलाता है, कभी एक छोटा बच्चा बनकर गुदगुदाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। कुल मिलाकर रूहानी संगीत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी खुद को उन गीतों से जुड़ा पाते हैं। मोहम्मद रफ़ी के ऐसे ही कुछ नगमे, गीत, गज़ल पेश करूंगा आपके सामने आज मैं मनु मृदुल, इंटरनेट रेडियो जयपुर के सौजन्य से, आओ झूमे गाएं समूह की ओर से। सबसे पहले सुनते हैं एक बेहद रुमानी गीत, सूर्य रेखा जी और सैंडी की आवाज़ में, फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं, जिसमें मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया है सुमन कल्याणपुर ने।

वाह क्या बात है सूर्य रेखा दी और सैंडी। जैसा कि मैंने कहा, रूहानी संगीत सिर्फ रूमानी गीतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बेचैन दिल की निराशा का भी एहसास दिलाते हुए दिल की गहराइयों में उतर जाता है। ऐसा ही एक गीत सुनिए श्रुति और मुकेश चोपड़ा की आवाज में, जिसे फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त में मोहम्मद रफी ने गाया था।

चलिए अब सुनते हैं दिल की अभिव्यक्ति को उजागर करने वाला मोहम्मद रफी का गाया एक गीत अनिल झुमका वाला की आवाज में, फिल्म तीन देवियों से।

अगला गाना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपको अवश्य ही ऐसा लगेगा जैसे जन्नत यहीं उतर के आ गया हो। नौशाद का संगीत और मोहम्मद रफी की गायकी, साजों की आवाज, सुर लय ताल, जैसे शहद की मिठास और दिल में उमड़ता हुआ प्रेम। इससे ज्यादा क्या हो सकती है कोई प्रेम की अभिव्यक्ति। इस गीत को मोहम्मद रफी ने गाया था फिल्म मेरे महबूब में, और आपके सामने ला रहे हैं संजय हारने।

सिर्फ प्रेम की अनुभूति ही नहीं बल्कि विरह और विरह की उदासी और मोहब्बत की बेचैनी को भी रफ़ी अपने गानों में ऐसे उतारते थे कि चाहे किसी का दिल टूटा हो या ना टूटा हो, हर कोई उस गम को उनके गाए गानों में आसानी से महसूस कर ही लेता है। मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनकर लगता है कि मोहम्मद रफ़ी ना सिर्फ महसूस करके गाते थे बल्कि जो सुनता है वह खुद उसमें खो जाता है। इसी को कहते हैं रूहानी आवाज़। सुनते हैं अगला गीत विमल सोनी की आवाज़ में, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म दिल एक मंदिर में गाया था।

कहते हैं सत्य कड़वा होता है, मगर यकीन मानिए मोहम्मद रफ़ी ने इस बात को झुठला दिया है। और यह हो पाया है मोहम्मद रफ़ी के सत्य को अभिव्यक्त करने के अंदाज से। यही नहीं, अगला गाना सुनकर आपको सत्य बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, बल्कि उस सत्य के आध्यात्म को सुनकर सोच में पड़ जाएंगे। शाश्वत सत्य को मोहम्मद रफ़ी ने जिस गंभीरता से गाया है, उससे तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने उसे रूह से महसूस करके गाया है। मगर मुझे विश्वास है कि इस गीत को सुनने के बाद आप भी आत्मविभोर हो उठेंगे। ये गीत फिल्म चित्रलेखा से है, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया है रोशन ने, जिसे आज लेकर आ रही हैं बहुत ही सुरीली और बेहद उम्दा गायिका जूही सिन्हा।

बरसात में भीगती हुई नायिका और शायर दूर से उसे निहारता हुआ। क्या ये भूलने की बात है? जिस तरह शायर ने उस माहौल का व्याख्यान किया है और जिस बखूबी से मोहम्मद रफ़ी ने उसे गाया है, लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह घूम रहा हो। यह होता है रूहानी संगीत का असर। पेश करने जा रहे हैं आपके सामने संजय गुप्ता, जम्मू से।

0: इसी खूबसूरत गीत के साथ
1: बने रहिए हमारे साथ।
2: जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। जयपुर रेडियो।
3: उफ, ये सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
4: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा JMD का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाएं।
5: JMD, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
6: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज की शाम कुछ खास है क्योंकि हम आज एक ऐसे गायक के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम सब सुरों के बादशाह के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ सही पहचाना, वो कोई और नहीं हम सबके चहेते मोहम्मद रफी जी हैं। रफी जी का जन्म 1924 में अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था और उनको बचपन में सब फिंकू के नाम से पुकारा करते थे। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए जैसे कि असमीस, कोंकणी, भोजपुरी, तेलुगु, मैथिली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली जैसी भाषाएं। और तो और उन्होंने इंग्लिश, फारसी, अरेबिक, सिन्हला, डच, स्पैनिश जैसी भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने हर तरह के गीत भी गाए जैसे कि भक्ति गीत, शास्त्रीय गीत, गजल, कव्वाली, देशभक्ति गीत, मस्ती भरे गीत और दर्द भरे गीत। तो फिर आज के गीतों के कारवां का आगाज करते हैं 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं से, जिसमें ऋषि कपूर जी थे। इस फिल्म को बेमिसाल संगीत से सजाया आरडी बर्मन जी की धुनों ने और सुरों को लफ्जों से सजाया मजरू सुल्तानपुरी जी ने। इस फिल्म के सारे गाने खूब धूम मचा रहे थे पर उस साल का फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला मोहम्मद रफी जी को और साथ ही साथ उसी गाने के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। तो फिर आइए उसी गीत को सुनते हैं मेरी और विद्या प्रकाश जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1980 की फिल्म आप ऐसे तो न थे से है, जिसमें राज बब्बर और रंजीता कौर थीं। इस फिल्म का जादू भरा संगीत दिया उषा खन्ना जी ने और गीत लिखे निदा फाजली जी ने। क्यों ना इसी जादू भरे गीत को सुना जाए विद्या जी और बिंदु जी की मधुर आवाज में।

0: joining.
1: क्या खूब पेशकश की। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म एक नारी दो रूप से, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रश्मि धवन थी। इस फिल्म में मात्र 4 गाने थे और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया गणेश जी ने और बेमिसाल शब्दों से सजाया असद भोपाली जी ने। चलिए इसी फिल्म के एक बेमिसाल गीत को सुनते हैं MD त्यागी जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म उस्तादों के उस्ताद से है, जिसमें प्रदीप कुमार के साथ शशिकला थी। इस फिल्म के सारे गाने खूब हिट हुए। इस फिल्म का बेहद शानदार संगीत दिया रवि जी ने और गीतों को शब्दों से पिरोया असद भोपाली जी ने। आइए इसी शानदार गीत को सुनते हैं अनिल झुमका वाला जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक शानदार पेशकश। दोस्तों, चलिए एक खेल खेलते हैं, पर उसके लिए आप सबको पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जी हाँ, आंखें बंद। ये ना सोचिएगा कि मैं देख नहीं रहा, आंखें बिल्कुल बंद। अब अगर मैं आप सबको इस मौसम में कश्मीर की बर्फीली वादियों में ले चलूं तो कैसा रहेगा? चारों तरफ बर्फीली वादियां, बर्फीले पहाड़ और ये मस्त सर्द हवा। क्या कहा आपने? कोई फिल्म का नाम याद आया? सही कहा, कश्मीर की कली। ये एक ऐसी फिल्म थी जो कश्मीर की बर्फीली वादियों में शूट की गई थी। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे SH बिहारी जी ने और उतना ही मस्ती भरा संगीत दिया ओपी नैयर जी ने। आइए इसी मस्ती भरे फिल्म के मस्ती भरे गीत को सुनते हैं जूही जी और सज्जाद जी की मधुर आवाज में।

कैसी लगी ये बर्फीले पहाड़ों की सैर? कश्मीर की कली एक ऐसी फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर के सभी गीतों को स्वर दिया मोहम्मद रफी जी ने और सारे के सारे गाने खूब सुपरहिट हुए। चलिए एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी और डॉक्टर आदेश जी की मधुर आवाज में।

अगली पेशकश जो हम सुनेंगे वो 1959 की फिल्म गूंज उठी शहनाई से है, जिसमें राजेंद्र कुमार और अमिता थी। ये फिल्म 1959 की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक मानी जाती है और राजेंद्र कुमार जी की ये पहली हिट फिल्म भी मानी जाती है। इस फिल्म का बेमिसाल गीत लिखे भरत व्यास जी ने और रागों का इस्तेमाल करते हुए सुरों से बेहद खूबसूरती से सजाया वसंत देसाई जी ने। आइए राग गरा पर आधारित इसी फिल्म का एक बेमिसाल गीत सुनते हैं मनोज जी और गायत्री जी की मधुर स्वर लहरी में।

अगली पेशकश जो हम सुनेंगे वो 1961 की फिल्म शोला और शबनम से है, जिसमें धर्मेंद्र जी के साथ तरला मेहता थी। इस फिल्म का शानदार संगीत दिया खय्याम जी ने और फिल्म के गीत लिखे कैफी आजमी जी ने। आइए राग भैरवी पर आधारित इसी फिल्म के शानदार गीत को सुनते हैं अनूप दुआ जी और हीना जी की मधुर आवाज़ में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें से है, जिसमें अशोक कुमार जी के साथ आशा पारेख थी। इस फिल्म का बेमिसाल संगीत दिया सचिन देव बर्मन जी ने और बेहद खूबसूरत गीत लिखे शैलेंद्र जी ने। आइए राग अहिर भैरव पर आधारित इसी फिल्म का ये बेहतरीन गीत सुनते हैं मनप्रीत जी और भौमिक जी की शानदार स्वरों में।

दोस्तों, अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म पारस मनी से है, जिसमें उस जमाने की ऐसी फिल्म थी जो ब्लैक एंड व्हाइट थी और आंशिक रूप में कलर थी। फिल्म इस कदर हिट हुई थी कि इसे तमिल में डब करके 1964 में मायामणि के नाम से भी रिलीज किया गया था। ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसका बेमिसाल संगीत जोड़ी बनने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया और खूबसूरत गीत लिखे असाद भोपाली जी ने। आइए राग यमन पर आधारित इसी फिल्म का बेमिसाल गीत सुनते हैं अपर्णा जी और डॉली जी की मधुर स्वर लहरी में।

अगला गीत जो हम सुनेंगे वो 1974 की फिल्म हाथ की सफाई से है, जिसमें विनोद खन्ना, रणधीर कपूर, हेमा मालिनी के साथ सिमी ग्रेवाल थी। इस फिल्म का खूबसूरत संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने और बेमिसाल गीत लिखे गुलशन बावरा जी ने। चलिए राग बसंत मुखारी कोमल भैरव पर आधारित इसी फिल्म का बेहद शानदार गीत सुनते हैं अनुजा जी और मेरी आवाज़ में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें से है, जिसमें अशोक कुमार जी के साथ आशा पारेख थी। इस फिल्म का बेमिसाल संगीत दिया सच

0: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष पर मैं आज आपके लिए कुछ अलग तरह के गीत एक गुलदस्ते में लेकर आया हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास है जो 1500 साल ईसा पूर्व से पहले का है। ये वेदों के पवित्र मंत्रों और भजनों से विकसित हुआ और समय के साथ इसने विभिन्न प्रभावों से आकार लिया। मध्यकाल में दो प्रमुख परंपराओं हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत का उदय हुआ। हिंदुस्तानी संगीत जहां उत्तर भारत में फला फूला, वहीं कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में फूला फला। दोनों परंपराएं जटिल धुनों और संगीत के सुधार पर जोर देती हैं। तानसेन, त्यागराज और रविशंकर जैसे प्रमुख संगीतकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नया आकार देने और लोकप्रियता बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत में गहराई एक निहित प्रतिष्ठित कला के रूप में पोषित है। तो क्यों ना इस गुलदस्ते के कुछ फूल रूपी गीतों का आज आनंद उठाएं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे सुनहरे गीत के साथ जो कि 1952 की एक सुपरहिट फिल्म बैजू बावरा से है, जिसमें भरत भूषण के साथ मीना कुमारी थी। ये उन दिनों की ऐसी सुपरहिट फिल्म थी जिसने 1952 में ही 1.25 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि आज के 125 करोड़ या 15 मिलियन डॉलर के बराबर मानी जाती है। ये फिल्म का झूमता संगीत दिया नौशाद जी ने और बेमिसाल गीत लिखे शकील बदायूनी जी ने। इस पूरी फिल्म में अलग अलग रागों पर आधारित 13 बहुचर्चित और लोकप्रिय भजन और गीत थे। इस फिल्म ने मोहम्मद रफ़ी जी को एक चोटी के कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित किया और इसी फिल्म से मीना कुमारी जी को सबसे पहला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला और वहीं नौशाद जी को पहला फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला। ये एक ऐसी इकलौती फिल्म थी जिसने 2002 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के टॉप 20 फिल्म्स में से 13th नंबर का रैंक मिला। आइए इसी फिल्म के राग मलखांस पर आधारित एक सुनहरे गीत को सुनते हैं प्रशांत नायर जी की मधुर आवाज़ में।

अगली पेशकश जो हम सुनेंगे वो 1961 की फिल्म शोला और शबनम से है, जिसमें धर्मेंद्र जी के साथ तरला मेहता थी। इस फिल्म का शानदार संगीत दिया खय्याम जी ने और फिल्म के गीत लिखे कैफी आजमी जी ने। आइए राग भैरवी पर आधारित इसी फिल्म के शानदार गीत को सुनते हैं अनूप दुआ जी और हीना जी की मधुर आवाज़ में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें से है, जिसमें अशोक कुमार जी के साथ आशा पारेख थी। इस फिल्म का बेमिसाल संगीत दिया सचिन देव बर्मन जी ने और बेहद खूबसूरत गीत लिखे शैलेंद्र जी ने। आइए राग अहेर भैरव पर आधारित इसी फिल्म का ये बेहतरीन गीत सुनते हैं मनप्रीत जी और भौमिक जी की शानदार स्वरों में।

दोस्तों, अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म पारस मनी से है, जिसमें महिपाल और गीतांजलि थी। ये उस जमाने की ऐसी फिल्म थी जो ब्लैक एंड वाइट थी और आंशिक रूप में कलर थी। फिल्म इस कदर हिट हुई थी कि इसे तमिल में डब करके 1964 में मायामणि के नाम से भी रिलीज किया गया था। ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसका बेमिसाल संगीत जोड़ी बनने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया और खूबसूरत गीत लिखे असाद भोपाली जी ने। आइए राग यमन पर आधारित इसी फिल्म का बेमिसाल गीत सुनते हैं अपर्णा जी और डॉली जी की मधुर स्वर लहरी में।

अगला गीत जो हम सुनेंगे वो 1974 की फिल्म हाथ की सफाई से है, जिसमें विनोद खन्ना, रणधीर कपूर, हेमा मालिनी के साथ सिमी गरेवाल थीं। इस फिल्म का खूबसूरत संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने और बेमिसाल गीत लिखे गुलशन बावरा जी ने। चलिए राग बसंत मुखारी कोमल भैरव पर आधारित इसी फिल्म का बेहद शानदार गीत सुनते हैं अनुजा जी और मेरी आवाज़ में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1978 की फिल्म तुम्हारे लिए से है, जिसमें संजीव कुमार के साथ विद्या सिन्हा थी। इसमें शानदार संगीत दिया जयदेव जी ने और खूबसूरत गीत लिखे नक्श लयालपुरी जी ने। जो राग इस गीत में आप सुनेंगे वो राग शिवरंजनी है। शिवरंजनी हिंदुस्तानी परंपरा में एक नया राग माना जाता है जो मूल रूप से कर्नाटक राग है। राग शिवरंजनी बहुत ही मधुर राग है और इसे देर शाम के समय गाया जाता है। जैसे कि आप नाम से पता कर सकते हैं, इस राग का उपयोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आइए इसी राग पर आधारित इस फिल्म का एक शानदार गीत सुनते हैं संगीता जी और गिरिजा जी की मधुर स्वर लहरी में।

अगला गीत जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ वो 1991 की फिल्म लेकिन से है, जिसमें विनोद खन्ना और डिंपल कबाड़िया थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1895 में उनकी लिखी हुई एक आध्यात्मिक कहानी क्षुधित पाषाण मतलब हंग्री स्टोन्स पर आधारित फिल्म है, जो कि पुनर्जन्म से जुड़ी हुई थी। ये फिल्म लता मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर द्वारा निर्मित थी, जिसे 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी मिले। और इस फिल्म का शानदार संगीत दिया हृदयनाथ मंगेशकर जी ने, और इस फिल्म को बेहद शानदार तरीके से लिखा, निर्देशन किया और गीत लिखे गुलजार जी ने। आइए राग भूपाली चंद्रकांत पर आधारित इस फिल्म के शानदार गीत का आनंद उठाते हैं केतन जी और कविता जी की मधुर आवाज़ में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1997 की फिल्म जिद्दी से है, जिसमें सनी देओल के साथ रवीना टंडन थी। ये फिल्म 1997 की बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म के गीत लिखे समीर जी ने और संगीतबद्ध किया समीर सेन और दिलीप सेन जी ने। आइए राग भूपाली पर आधारित इस फिल्म के गीत को सुनते हैं विद्या प्रकाश जी और राजेंद्र अडेब जी की मधुर आवाज़ में।

दोस्तों, अब जो गीत मैं आपकी नज़र करने वाला हूँ वो 2006 की फिल्म ओमकारा से है, जिसमें अजय देवगन और करीना कपूर थीं। ये फिल्म विलियम शेक्सपियर की ओथेलो कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म के खूबसूरत गीत लिखे गुलजार जी ने और फिल्म का निर्देशन और संगीत का जादू दिया विशाल भारद्वाज जी ने। आइए राग जोग पर आधारित इस फिल्म के शानदार गीत का आनंद उठाते हैं विद्या विकास जी और विश्वजीत जी की मधुर आवाज़ में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूँ।
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
0: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष पर मैं आज आपके लिए कुछ अलग तरह के गीत एक गुलदस्ते में लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास है जो 1500 साल ईसा पूर्व से पहले का है। ये वेदों के पवित्र मंत्रों और भजनों से विकसित हुआ और समय के साथ इसने विभिन्न प्रभावों से आकार लिया। मध्यकाल में दो प्रमुख परंपराओं हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत का उदय हुआ। हिंदुस्तानी संगीत जहां उत्तर भारत में फला फूला, वहीं कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में फूला फला। दोनों परंपराएं जटिल धुनों और संगीत के सुधार पर जोर देती हैं। तानसेन, त्यागराज और रविशंकर जैसे प्रमुख संगीतकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नया आकार देने और लोकप्रियता बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत में गहराई एक निहित प्रतिष्ठित कला के रूप में पोषित है। तो क्यों ना इस गुलदस्ते के कुछ फूल रूपी गीतों का आज आनंद उठाएं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे सुनहरे गीत के साथ जो कि 1952 की एक सुपरहिट फिल्म बैजू बावरा से है, जिसमें भरत भूषण के साथ मीना कुमारी थी। ये उन दिनों की ऐसी सुपरहिट फिल्म थी जिसने 1952 में ही 1.25 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि आज के 125 करोड़ या 15 मिलियन डॉलर के बराबर मानी जाती है। ये फिल्म का झूमता संगीत दिया नौशाद जी ने और बेमिसाल गीत लिखे शकील बदायूनी जी ने। इस पूरी फिल्म में अलग अलग रागों पर आधारित 13 बहुचर्चित और लोकप्रिय भजन और गीत थे। इस फिल्म ने मोहम्मद रफ़ी जी को एक चोटी के कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित किया और इसी फिल्म से मीना कुमारी जी को सबसे पहला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला और वहीं नौशाद जी को पहला फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला। ये एक ऐसी इकलौती फिल्म थी जिसने 2002 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के टॉप 20 फिल्म्स में से 13th नंबर का रैंक मिला। आइए इसी फिल्म के राग मलखांस पर आधारित एक सुनहरे गीत को सुनते हैं प्रशांत नायर जी की मधुर आवाज में।

अगली पेशकश जो हम सुनेंगे वो 1959 की फिल्म गूंज उठी शहनाई से है, जिसमें राजेंद्र कुमार और अमिता थी। ये फिल्म 1959 की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक मानी जाती है और राजेंद्र कुमार जी की ये पहली हिट फिल्म भी मानी जाती है। इस फिल्म का बेमिसाल गीत लिखे भरत व्यास जी ने और रागों का इस्तेमाल करते हुए सुरों से बेहद खूबसूरती से सजाया वसंत देसाई जी ने। आइए राग गरा पर आधारित इसी फिल्म का एक बेमिसाल गीत सुनते हैं मनोज जी और गायत्री जी की मधुर स्वर लहरी में।

अगली पेशकश जो हम सुनेंगे वो 1961 की फिल्म शोला और शबनम से है, जिसमें धर्मेंद्र जी के साथ तरला मेहता थी। इस फिल्म का शानदार संगीत दिया खय्याम जी ने और फिल्म के गीत लिखे कैफी आजमी जी ने। आइए राग भैरवी पर आधारित इसी फिल्म के शानदार गीत को सुनते हैं अनूप दुआ जी और हीना जी की मधुर आवाज़ में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें से है, जिसमें अशोक कुमार जी के साथ आशा पारेख थी। इस फिल्म का बेमिसाल संगीत दिया सचिन देव बर्मन जी ने और बेहद खूबसूरत गीत लिखे शैलेंद्र जी ने। आइए राग अहिर भैरव पर आधारित इसी फिल्म का ये बेहतरीन गीत सुनते हैं मनप्रीत जी और भौमिक जी की शानदार स्वरों में।

दोस्तों, अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म पारस मनी से है, जिसमें महिपाल और गीतांजलि थी। ये उस जमाने की ऐसी फिल्म थी जो ब्लैक एंड वाइट थी और आंशिक रूप में कलर थी। फिल्म इस कदर हिट हुई थी कि इसे तमिल में डब करके 1964 में मायामनी के नाम से भी रिलीज किया गया था। ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसका बेमिसाल संगीत जोड़ी बनने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया और खूबसूरत गीत लिखे असाद भोपाली जी ने। आइए राग यमन पर आधारित इसी फिल्म का बेमिसाल गीत सुनते हैं अपर्णा जी और डॉली जी की मधुर स्वर लहरी में।

अगला गीत जो हम सुनेंगे वो 1974 की फिल्म हाथ की सफाई से है, जिसमें विनोद खन्ना, रणधीर कपूर, हेमा मालिनी के साथ सिमी ग्रेवाल थी। इस फिल्म का खूबसूरत संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने और बेमिसाल गीत लिखे गुलशन बावरा जी ने। चलिए राग बसंत मुखारी कोमल भैरव पर आधारित इसी फिल्म का बेहद शानदार गीत सुनते हैं अनुजा जी और मेरी आवाज़ में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1978 की फिल्म तुम्हारे लिए से है, जिसमें संजीव कुमार के साथ विद्या सिन्हा थी। इसमें शानदार संगीत दिया जयदेव जी ने और खूबसूरत गीत लिखे नक्श लयालपुरी जी ने। जो राग इस गीत में आप सुनेंगे वो राग शिवरंजनी है। शिवरंजनी हिंदुस्तानी परंपरा में एक नया राग माना जाता है जो मूल रूप से कर्नाटक राग है। राग शिवरंजनी बहुत ही मधुर राग है और इसे देर शाम के समय गाया जाता है। जैसे कि आप नाम से पता कर सकते हैं, इस राग का उपयोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आइए इसी राग पर आधारित इस फिल्म का एक शानदार गीत सुनते हैं, संगीता जी और गिरिजा जी की मधुर स्वर।

अगला गीत जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ वो 1991 की फिल्म लेकिन से है, जिसमें विनोद खन्ना और डिंपल कबाड़िया थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1895 में उनकी लिखी हुई एक आध्यात्मिक कहानी क्षुधित पाषाण मतलब हंग्री स्टोन्स पर आधारित फिल्म है, जो कि पुनर्जन्म से जुड़ी हुई थी। ये फिल्म लता मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर द्वारा निर्मित थी, जिसे 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी मिले। और इस फिल्म का शानदार संगीत दिया हृदयनाथ मंगेशकर जी ने, और इस फिल्म को बेहद शानदार तरीके से लिखा, निर्देशन किया और गीत लिखे गुलजार जी ने। आइए राग भूपाली चंद्रकांत पर आधारित इस फिल्म के शानदार गीत का आनंद उठाते हैं केतन जी और कविता जी की मधुर आवाज़ में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1997 की फिल्म जिद्दी से है, जिसमें सनी देओल के साथ रवीना टंडन थी। ये फिल्म 1997 की बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म के गीत लिखे समीर जी ने और संगीतबद्ध किया समीर सेन और दिलीप सेन जी ने। आइए राग भूपाली पर आधारित इस फिल्म के गीत को सुनते हैं विद्या प्रकाश जी और राजेंद्र अडेब जी की मधुर आवाज़ में।

दोस्तों, अब जो गीत मैं आपकी नज़र करने वाला हूँ वो 2006 की फिल्म ओमकारा से है, जिसमें अजय देवगन और करीना कपूर थीं। ये फिल्म विलियम शेक्सपियर की ओथेलो कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म के खूबसूरत गीत लिखे गुलजार जी ने और फिल्म का निर्देशन और संगीत का जादू दिया विशाल भारद्वाज जी ने। आइए, राग जोग पर आधारित इस फिल्म के शानदार गीत का आनंद उठाते हैं विद्या विकास जी और विश्वजीत जी की मधुर आवाज़ में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूँ।
1: आओ झूमे गाएं। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
0: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष पर मैं आज आपके लिए कुछ अलग तरह के गीत एक गुलदस्ते में लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास है जो 1500 साल ईसा पूर्व से पहले का है। ये वेदों के पवित्र मंत्रों और भजनों से विकसित हुआ और समय के साथ इसने विभिन्न प्रभावों से आकार लिया। मध्यकाल में दो प्रमुख परंपराओं हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत का उदय हुआ। हिंदुस्तानी संगीत जहां उत्तर भारत में फला फूला, वहीं कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में फूला फला। दोनों परंपराएं जटिल धुनों और संगीत के सुधार पर जोर देती हैं। तानसेन, त्यागराज और रविशंकर जैसे प्रमुख संगीतकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नया आकार देने और लोकप्रियता बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत में गहराई एक निहित प्रतिष्ठित कला के रूप में पोषित है। तो क्यों ना इस गुलदस्ते के कुछ फूल रूपी गीतों का आज आनंद उठाएं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे सुनहरे गीत के साथ जो कि 1952 की एक सुपरहिट फिल्म बैजू बावरा से है, जिसमें भरत भूषण के साथ मीना कुमारी थी। ये उन दिनों की ऐसी सुपरहिट फिल्म थी जिसने 1952 में ही 1.25 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि आज के 125 करोड़ या 15 मिलियन डॉलर के बराबर मानी जाती है। ये फिल्म का झूमता संगीत दिया नौशाद जी ने और बेमिसाल गीत लिखे शकील बदायूनी जी ने। इस पूरी फिल्म में अलग अलग रागों पर आधारित 13 बहुचर्चित और लोकप्रिय भजन और गीत थे। इस फिल्म ने मोहम्मद रफी जी को एक चोटी के कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित किया और इसी फिल्म से मीना कुमारी जी को सबसे पहला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला और वहीं नौशाद जी को पहला फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला। ये एक ऐसी इकलौती फिल्म थी जिसने 2002 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के टॉप 20 फिल्म्स में से 13th नंबर का रैंक मिला। आइए इसी फिल्म के राग मलखांस पर आधारित एक सुनहरे गीत को सुनते हैं प्रशांत नायर जी की मधुर आवाज में।

अगली पेशकश जो हम सुनेंगे वो 1959 की फिल्म गूंज उठी शहनाई से है, जिसमें राजेंद्र कुमार और अमिता थी। ये फिल्म 1959 की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक मानी जाती है और राजेंद्र कुमार जी की ये पहली हिट फिल्म भी मानी जाती है। इस फिल्म का बेमिसाल गीत लिखे भरत व्यास जी ने और रागों का इस्तेमाल करते हुए सुरों से बेहद खूबसूरती से सजाया वसंत देसाई जी ने। आइए राग गारा पर आधारित इसी फिल्म का एक बेमिसाल गीत सुनते हैं मनोज जी और गायत्री जी की मधुर स्वर लहरी में।

अगली पेशकश जो हम सुनेंगे वो 1961 की फिल्म शोला और शबनम से है, जिसमें धर्मेंद्र जी के साथ तरला मेहता थी। इस फिल्म का शानदार संगीत दिया खय्याम जी ने और फिल्म के गीत लिखे कैफी आजमी जी ने। आइए राग भैरवी पर आधारित इसी फिल्म के शानदार गीत को सुनते हैं अनूप दुआ जी और हीना जी की मधुर आवाज़ में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें से है, जिसमें अशोक कुमार जी के साथ आशा पारिक थी। इस फिल्म का बेमिसाल संगीत दिया सचिन देव बर्मन जी ने और बेहद खूबसूरत गीत लिखे शैलेंद्र जी ने। आइए राग अहिर भैरव पर आधारित इसी फिल्म का ये बेहतरीन गीत सुनते हैं मनप्रीत जी और भौमिक जी की शानदार स्वरों में।

दोस्तों, अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म पारस मनी से है, जिसमें महिपाल और गीतांजलि थी। ये उस जमाने की ऐसी फिल्म थी जो ब्लैक एंड वाइट थी और आंशिक रूप में कलर थी। फिल्म इस कदर हिट हुई थी कि इसे तमिल में डब करके 1964 में मायामनी के नाम से भी रिलीज किया गया था। ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसका बेमिसाल संगीत जोड़ी बनने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया और खूबसूरत गीत लिखे असाद भोपाली जी ने। आइए राग यमन पर आधारित इसी फिल्म का बेमिसाल गीत सुनते हैं अपर्णा जी और डॉली जी की मधुर स्वर लहरी में।

अगला गीत जो हम सुनेंगे वो 1974 की फिल्म हाथ की सफाई से है, जिसमें विनोद खन्ना, रणधीर कपूर, हेमा मालिनी के साथ सिमी ग्रेवाल थी। इस फिल्म का खूबसूरत संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने और बेमिसाल गीत लिखे गुलशन बावरा जी ने। चलिए राग बसंत मुखारी कोमल भैरव पर आधारित इसी फिल्म का बेहद शानदार गीत सुनते हैं अनुजा जी और मेरी आवाज़ में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1978 की फिल्म तुम्हारे लिए से है, जिसमें संजीव कुमार के साथ विद्या सिन्हा थी। इसमें शानदार संगीत दिया जयदेव जी ने और खूबसूरत गीत लिखे नक्श लयालपुरी जी ने। जो राग इस गीत में आप सुनेंगे वो राग शिवरंजनी है। शिवरंजनी हिंदुस्तानी परंपरा में एक नया राग माना जाता है जो मूल रूप से कर्नाटक राग है। राग शिवरंजनी बहुत ही मधुर राग है और इसे देर शाम के समय गाया जाता है। जैसे कि आप नाम से पता कर सकते हैं, इस राग का उपयोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आइए इसी राग पर आधारित इस फिल्म का एक शानदार गीत सुनते हैं, संगीता जी और गिरिजा जी की मधुर स्वर लहरी।

अगला गीत जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ वो 1991 की फिल्म लेकिन से है, जिसमें विनोद खन्ना और डिंपल कबाड़िया थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1895 में उनकी लिखी हुई एक आध्यात्मिक कहानी क्षुधित पाषाण मतलब हंग्री स्टोन्स पर आधारित फिल्म है, जो कि पुनर्जन्म से जुड़ी हुई थी। ये फिल्म लता मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर द्वारा निर्मित थी, जिसे 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी मिले। और इस फिल्म का शानदार संगीत दिया हृदयनाथ मंगेशकर जी ने, और इस फिल्म को बेहद शानदार तरीके से लिखा, निर्देशन किया और गीत लिखे गुलजार जी ने। आइए राग भूपाली चंद्रकांत पर आधारित इस फिल्म के शानदार गीत का आनंद उठाते हैं केतन जी और कविता जी की मधुर आवाज़ में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1997 की फिल्म जिद्दी से है, जिसमें सनी देओल के साथ रवीना टंडन थी। ये फिल्म 1997 की बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म के गीत लिखे समीर जी ने और संगीतबद्ध किया समीर सेन और दिलीप सेन जी ने। आइए राग भूपाली पर आधारित इस फिल्म के गीत को सुनते हैं विद्या प्रकाश जी और राजेंद्र अडेब जी की मधुर आवाज़ में।

दोस्तों, अब जो गीत मैं आपकी नज़र करने वाला हूं वो 2006 की फिल्म ओमकारा से है, जिसमें अजय देवगन और करीना कपूर थीं। ये फिल्म विलियम शेक्सपियर की ओथेलो कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म के खूबसूरत गीत लिखे गुलजार जी ने और फिल्म का निर्देशन और संगीत का जादू दिया विशाल भारद्वाज जी ने। आइए राग जोग पर आधारित इस फिल्म के शानदार गीत का आनंद उठाते हैं विद्या विकास जी और विश्वजीत जी की मधुर आवाज़ में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूँ।
1: आओ झूमे गाएं। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
0: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष पर मैं आज आपके लिए कुछ अलग तरह के गीत एक गुलदस्ते में लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास है जो 1500 साल ईसा पूर्व से पहले का है। ये वेदों के पवित्र मंत्रों और भजनों से विकसित हुआ और समय के साथ इसने विभिन्न प्रभावों से आकार लिया। मध्यकाल में दो प्रमुख परंपराओं हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत का उदय हुआ। हिंदुस्तानी संगीत जहां उत्तर भारत में फला फूला, वहीं कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में फूला फला। दोनों परंपराएं जटिल धुनों और संगीत के सुधार पर जोर देती हैं। तानसेन, त्यागराज और रविशंकर जैसे प्रमुख संगीतकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नया आकार देने और लोकप्रियता बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत में गहराई एक निहित प्रतिष्ठित कला के रूप में पोषित है। तो क्यों ना इस गुलदस्ते के कुछ फूल रूपी गीतों का आज आनंद उठाएं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे सुनहरे गीत के साथ जो कि 1952 की एक सुपरहिट फिल्म बैजू बावरा से है, जिसमें भरत भूषण के साथ मीना कुमारी थी। ये उन दिनों की ऐसी सुपरहिट फिल्म थी जिसने 1952 में ही 1.25 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि आज के 125 करोड़ या 15 मिलियन डॉलर के बराबर मानी जाती है। ये फिल्म का झूमता संगीत दिया नौशाद जी ने और बेमिसाल गीत लिखे शकील बदायूनी जी ने। इस पूरी फिल्म में अलग अलग रागों पर आधारित 13 बहुचर्चित और लोकप्रिय भजन और गीत थे। इस फिल्म ने मोहम्मद रफ़ी जी को एक चोटी के कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित किया और इसी फिल्म से मीना कुमारी जी को सबसे पहला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला और वहीं नौशाद जी को पहला फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला। ये एक ऐसी इकलौती फिल्म थी जिसने 2002 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के टॉप 20 फिल्म्स में से 13th नंबर का रैंक मिला। आइए इसी फिल्म के राग मलखांस पर आधारित एक सुनहरे गीत को सुनते हैं प्रशांत नायर जी की मधुर आवाज में।

0: न छोड़ो।
1: स्वागत है आपका दोस्तों हमारे वीकली शो आओ झूमे गाएं में, और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। मैं आपकी होस्ट रति भार्गव और मेरे साथ आओ झूमे गाएं ग्रुप के कुछ बेहतरीन कलाकार। और हमारा आज का ये एपिसोड है ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी सिंगर SP बाला सुब्रमण्यम जी के नाम। और एक अच्छे सुगम संगीत श्रोता की तरह बात करूं तो SP बाला सुब्रमण्यम जी के रूप में बॉलीवुड में गूंजने वाली दक्षिण भारत की वो पहली आवाज़ थी जो न सिर्फ रेडियो बल्कि TV के माध्यम से भी हमारे दिलों तक धस गई थी। ऐसा स्वर जिसमें बालू रेत की गंध और अंडर घरौंदे का आत्मीय तत्व था, इसी जज्बे में पगा वो गीत था आंखें तेरी बाहों में। SP जी और स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का यह युगल गीत 90 के दशक की शुरुआत में जवानी में कदम रखने वालों के लिए हल्फनामे की तरह एक प्रेम गीत बन गया था। तो दोस्तों इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज इसी गाने से, जो कि ले आ रहे हैं राजेंद्र अडेट जी और मनीषा जी आपके लिए।

बेहद खूबसूरती से निभाया आपने राजेंद्र जी और मनीषा दिग्गज गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम जी के नाम से वाकिफ हो या कुछ ना भी हो, पर सलमान खान का नाम तो जानते ही हैं। जब सलमान खान नए नए फिल्मों में आए थे तो कई सालों तक एसपी बाला सुब्रमण्यम जी को सलमान खान की आवाज़ समझा जाता। हमारा अगला गाना है सलमान खान के ऊपर, जो कि है मूवी अंदाज अपना अपना से, ये रात और ये दूरी। इस गाने को 60s के दशक की तरह फिल्माया गया है। इसमें हीरो और हीरोइन बगीचे में झूम रहे हैं और गा रहे हैं। ये गाना पेश करने आ रहे हैं आपके सामने कविता और किशोर।

तालियां तो बजती रहनी चाहिए दोस्तों, क्या मजे से गाया इसे कविता जी और किशोर जी ने। एसपीबी ने हिंदी सिनेमा को एक से एक सुपरहिट गाने दिए हैं। एसपीबी की हिट लिस्ट में सच मेरे यार है, ओ मारिया, दिल दीवाना, कबूतर जा जा, आजा शाम होने आई, मेरे रंग में रंगने वाली, दीदी तेरा देवर दीवाना, पहला पहला प्यार है और रोजा जाने मन जैसे कई गीत शुमार रहे। हमारा अगला गाना भी एसपीबी और सलमान की सुपरहिट जोड़ी का है और इसे पेश करने आ रही है आपके सामने विद्या प्रकाश जी और संजय जोशी जी।

सुन रहे थे दोस्तों संजय जोशी और विद्या प्रकाश को, जिन्होंने इस गाने के द्वारा हमें बिल्कुल मदहोश कर दिया। कमल हसन, रजनीकांत, MGR, जैकी श्रॉफ से लेकर सलमान और शाहरुख तक पूरे भारत के सुपरस्टार्स के लिए SP बालासुब्रमण्यम जी ने गाया है। तो क्या बोलता है भीड़ू लोग, हो जाए एक जगुदा और SPP का गाना। तो सुनते हैं हमारा ये अगला गाना रति भार्गव यानी मैं और प्रशांत नायर से।

मज़ा आया प्रशांत जी आपके साथ ये गाना गा के, कमाल की गायकी भी। बॉलीवुड में SPB की एंट्री इतनी धमाकेदार थी कि पहली फिल्म एक दूजे के लिए में प्लेबैक सिंगर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मेल सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। डायरेक्टर बालाचंद्र की इस फिल्म में एक अलग तरह की मोरपंखी प्रेम कथा थी। इसमें संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। कहते हैं कि लक्ष्मी प्यारे SPB की आवाज़ लेने को लेकर बहुत उत्सुक नहीं थे, लेकिन निर्माता बालाचंद्र के आग्रह पर उन्होंने SPB को मौका दिया। आइए सुनते हैं राशि प्रोडक्शन की ये सुपरहिट मूवी मैंने प्यार किया का ये गाना, जो कि गाया है SPB और लता मंगेशकर ने, और पेश करने आ रहे हैं दीप शिखा जी और निश्चल जी अपनी मधुर आवाज़ में।

बहुत ही खूबसूरत पेशकश थी दीपशिखा जी और निश्चल जी आपकी। एसपी बाला सुब्रमण्यम जी को प्यार से लोग एसपीबी या बालू भी कहते थे। इनको संगीत विरासत में अपने पिता से मिली थी, जो तेलुगु हरिकथा गायक थे। यह संगीत में कीर्तन प्रवचन की लोक विधा है, भक्ति संगीत है। इसी बीच से एसपीबी का उदय हुआ। इनकी गायकी का खजाना बहुत बड़ा है। उन्होंने हिंदी सहित 16 भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए और सभी में ज़बरदस्त लोकप्रियता अर्जित की। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा। आइए सुनाती हूँ आपको अगला सुपरहिट गाना, जो कि है मैजिकल जोड़ी से। आरडी बर्मन का म्यूजिक, जावद अख्तर के बोल, सागर मूवी का ये गाना कमल हसन पे फिल्म आया, और इसे पेश करने आ रहे हैं आपके सामने मुकेश जी और गगन जी।

Wow, that was a wonderful performance by Mukesh Chopra ji and Gagan ji. कमल हसन और अति अग्निहोत्री की यह हिट फिल्म एक दूजे के लिए के गीतों को भी SPB ने ही आवाज दी थी। इस फिल्म का ये गीत मेरे जीवन साथी आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। आइए इस गीत का आनंद लेते हैं प्रेरणा और रामकी की मधुर आवाज़।

0: इश्क इश्क इश्क
1: नॉटी बॉय
0: इश्क इश्क इश्क
1: लव मास्टर
2: ये रास्ते हैं प्यार के चलते चलते मेरे हम सफर
1: आप

वाह वाह, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्रेरणा जी, रामकी जी, क्या बात, मजा आ गया। सिने संगीत का ये वो संक्रमण काल था जब मुकेश और मोहम्मद रफी के रूप में दो स्वर्गीय आवाजें इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। किशोर कुमार को लोग खूब सुन चुके थे और किसी नए अंदाज वाले स्वर का इंतजार था। तभी SPP की एंट्री हुई हिंदी फिल्म जगत में, जो कि दक्षिण भारत की फिल्मों में डेढ़ दशक से गा रहे थे। और आज SPP जी को कौन नहीं जानता। मैंने प्यार किया के गाने हो या साजन या फिर हम आपके हैं कौन, इन सब फिल्मों में सलमान को SPP ने ही आवाज़ दी थी। ये बात भी अगर पुरानी लग रही है तो कुछ साल पहले आई चेन्नई एक्सप्रेस का टाइटल गाना SPP जी ने ही गाया था। आइए सुनते हैं हमारा अगला गाना मैंने प्यार किया मूवी का ही, प्रियंका और रेस की आवाज़ में।

Wow, that was a super fantabulous performance by Priyanka and Reyes. Sachi, मौसम ही बदल दिया. यूं हिंदी सिने प्लेबैक सिंगर की दुनिया को कई गैर हिंदी भाषियों ने सजाया संवारा है, लेकिन इससे पहले सुरों की दुनिया में दक्षिण भारतीय स्वर बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे थे, लेकिन 70 के दशक में सुरों के सांस्कृतिक समन्वय की यह तस्वीर बदलने लगी. इसी दौर में बॉलीवुड में दक्षिण भारत से आए दो महान गायकों ने अपनी अलग मौजूदगी दर्ज कराई. याद रहे, सिने संगीत का ये वो सुरीला दौर था जब कान आँख की भूमिका भी निभाया करते थे. संगीत रिदम से ज़्यादा किसी अगरबत्ती की खुशबू की माफिक तन मन में रचने वाला हुआ करता था. आइए सुनते हैं हमारा अगला गाना मूवी गर्दिश से. इसे बहुत ही खूबसूरती से गाया आशा भोसले जी और SP बाला सुब्रमण्यम जी ने. संगीत से सजाया RD बर्मन ने और बोल थे जावेद अख्तर के, ये मेरा दिल तो पागल है, कहे तेरा ही आंचल है जो बादल है, ये तेरा दिल तो पागल है. और इस गाने को बहुत ही सुरीली आवाज़ में लेके आ रहे हैं मनीषा जी और मंगेश यादव जी आपके लिए.

खूबसूरत ये गाना उतनी ही खूबसूरती से निभाए से मनीषा जी और मंगेश जी ने। हमारा अगला फेमस रोमांटिक सॉन्ग आजा शाम होने आई, मैंने प्यार किया मूवी से इसे फिल्माया गया है सलमान खान पे, म्यूजिक राम लक्ष्मण का और बोल दिए देव कोहली जी ने। आइए सुनते हैं इस गाने को डॉक्टर तरुणा और बिमल जी की आवाज़ में।

0: कम ऑन।
1: तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रति भार्गव, अपने आओ झूमे गायक ग्रुप के कुछ बेहतरीन कलाकारों के साथ साथ निभाने के लिए शुक्रिया दोस्तों। सच में दिल से टाइम नहीं मिलता आजकल, फिर भी आप एक कोना ढूंढ ही लेते हैं हमारे आओ झूमे गायक के दोस्तों के लिए। आजकल के इस पॉडकास्ट प्रोग्राम की भीड़ में एक और प्रोग्राम को आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। एज टूडे वी आर ऑन पॉइंट फॉर चॉइस, वॉट वी वॉच, वॉट वी लिसन टू, हुम वी मीट, वेयर वी गो, वॉट वी ईट, ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। इस कंटेंट की भीड़ में आप मुझे वाइबल ऑप्शन बना के रखते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे वीकली शो आओ झूमे गाए में, और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। मैं आपकी होस्ट रति भार्गव और मेरे साथ आओ झूमे गाए ग्रुप के कुछ बेहतरीन कलाकार। और हमारा आज का ये एपिसोड है ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी सिंगर SP बालासुब्रमण्यम जी के नाम। और एक अच्छे सुगम संगीत श्रोता की तरह बात करूं तो SP बालासुब्रमण्यम जी के रूप में बॉलीवुड में गूंजने वाली दक्षिण भारत की वो पहली आवाज़ थी जो न सिर्फ रेडियो बल्कि टीवी के माध्यम से भी हमारे दिलों तक धंस गई थी। ऐसा स्वर जिसमें बालू रेत की गंध और अंगर घरौंदे का आत्मीय तत्व था, इसी जज्बे में पगा वो गीत था आंखें तेरी बाहों में। SP जी और स्वर सम्रागिनी लता मंगेशकर का यह युगल गीत 90 के दशक की शुरुआत में जवानी में कदम रखने वालों के लिए हल्फनामे की तरह एक प्रेम गीत बन गया था। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज इसी गाने से, जो कि लिए आ रहे हैं राजेंद्र अडेट जी और मनीषा जी आपके लिए।

चाहेंगे कि कैसे सारी दुनिया कृष्ण में से निकलती है और फिर एक दिन प्रलय के समय उसी में विलीन

कृष्ण की महिमा अर्जुन ने स्वयं उनके मुख से सुनी वो तो ठीक है, परंतु अर्जुन परमेश्वर से कहता है, हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। कृष्ण ने अपनी जिस महिमा को अर्जुन को बताया उसे परम गोपनीय कहते हैं। बड़े बड़े ऋषियों को भी उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन कृष्ण के लिए उनका भक्त ही सब कुछ है, चाहे वो अर्जुन हो या आप और हम। तो उन्होंने अर्जुन से और हम सबसे दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान को बांटा दोस्तों। लेकिन अब अर्जुन उनके इस रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता था। अर्जुन के जैसे ही शिष्य हम सबको बनना चाहिए। जब तक जिज्ञासा पूरी तरह शांत न हो जाए हमें अपने टीचर को छोड़ना नहीं चाहिए।

कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हर जगह होता है इसलिए, बल्कि इसलिए कि हर कण कण, हर प्राणी कृष्ण में से ही आया है। हमारा हर काम उसी के संकल्प का ही नतीजा है। ऐसा प्रभु जिसमें और जिससे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, तथा ऐसा प्रभु जो अंतर्यामी रूप से शासन करता है, ऐसे प्रभु को कौन नहीं देखना चाहेगा। यही बात अर्जुन कहता है उनसे कि यदि उसके द्वारा कृष्ण का वह रूप देखा जाना संभव है तो योगेश्वर को उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराना चाहिए।

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण का विश्व रूप कैसा होगा? कैसा दिखता होगा वो कृष्ण जिसे हम बचपन के माखन चोर या राधा के सखा या अर्जुन के सारथी के रूप में देख चुके हैं? कृष्ण के जिस रूप से हम परिचित हैं वो उनका रूप नहीं। वो तो जब कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको एक रूप चाहिए था, इसलिए वो वैसे दिखे। असल में अब वो अपना रूप अर्जुन को दिखाएंगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख।

कृष्ण अब अर्जुन को अपना असली रूप प्रत्यक्ष दिखाने जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। कृष्ण के वास्तविक रूप के बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं। कल्पना के लिए भी कुछ आधार चाहिए होता है, लेकिन जैसा कि खुद कृष्ण ने कहा कि वो अव्यक्त हैं, तो जो अव्यक्त है उसे आप कैसे सोच सकते हैं। लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को

कृष्ण जड़ और चेतन दोनों के अधिष्ठाता हैं, यानी कि नियामक, देखभाल करने वाले। जो कुछ भी इस दुनिया में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, उन दोनों के मालिक हैं वो। जमीन, नदी, पहाड़, सब उन्हीं की माया है, और हम में जो आत्मा है वो उसी का तो एक अंश है। तो सबसे बड़ी बात ये उठती है दोस्तों कि अगर कृष्ण के वास्तविक रूप को देखेंगे तो फिर तो हमको सब कुछ दिख जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ वो अर्जुन को बता रहे हैं। हे अर्जुन, अब इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो उसे तू देख।

लेकिन क्या ऐसा संभव भी है जिसमें सब कुछ है, जिससे हम सब आए हैं, जिसमें एक दिन तो हम सबको मिल जाना है, उसे क्या हम अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं? अर्जुन ने तो विनती की कि अगर संभव हो तो वो कृष्ण का विश्व रूप देखना चाहता है। कृष्ण ने हां भी भर ली, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कृष्ण कहते हैं, मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निःसंदेह समर्थ नहीं है, इसीलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। दोस्तों, प्राकृत का मतलब हुआ प्रकृति द्वारा दिए हुए।

ये सारा आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। स्वाभाविक है, संजय के माध्यम से ही ये गीता हम तक पहुंची। तो भाग्य देखिए कि अब अर्जुन जो देखेगा वो संजय भी देखेंगे। और धृतराष्ट्र देख तो नहीं सकते, लेकिन संजय के माध्यम से सुन तो पाएंगे ही, एकदम हमारे जैसे। ये बात और है कि संजय को भी दिव्य दृष्टि दी गई थी ताकि वह कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन दे सके। संजय कहते हैं, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया।

दोस्तों, अब जो कृष्ण का वर्णन आएगा उसको सुनने के साथ में अनुभव भी करते रहिएगा। अभी तक आपने कृष्ण की जो भी व्याख्या सुनी, अब उसका मूर्त रूप आपके सामने आएगा। जो सुना अब वो देखिए भी। संजय कहते हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा।

क्या सूर्य से कभी आंख मिला सकते हैं? क्या एक टक उसे देख सकते हैं? कृष्ण के विराट रूप को देखना एक नहीं हजारों सूर्य को देखने के समान है। इसीलिए अर्जुन अपनी प्राकृत आंखों से उसे नहीं देख सकते थे। इस विराट रूप का नजारा करने के लिए ही अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए गए थे। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जैसे ही कृष्ण का विराट रूप सामने आया तो ऐसा हुआ कि जैसे कि आकाश में हजार सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। दोस्तों, हजार सूर्य जब एक साथ उदय हो तो सोचिए कितना प्रकाश होगा। इतना ही प्रकाश उस समय अर्जुन के सामने था।

कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं। आवश्यक बात यह है कि कृष्ण का रूप असल में इस चराचर का ही तो रूप होगा, क्योंकि ये दुनिया, प्रकृति, हम, हमारी आत्मा सब उसी के अंश का ही रूप है। इसीलिए स्वाभाविक है कि अर्जुन को जो दिखें उसमें हमारा ये पूरा विश्व, ब्रह्मांड और हम खुद भी शामिल हो। संजय कहते हैं कि पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अर्जुन को अब ये जगत अलग अलग और बनता हुआ भी दिख रहा है। ततः सविस्मय।

अर्जुन ने पहले जो सुना उसकी कल्पना भी नहीं की थी, अब जो वो देख रहा है उसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रहा। अर्जुन एक अंत न होने वाले आश्चर्य से चकित है और उसका पूरा शरीर रोमांच से भर गया है। उसके सामने प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा स्वयं खड़े हैं। अर्जुन श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके अपने हाथ जोड़ लेता है। अर्जुन दुविधा में था, उसने अपना कर्म करने से मना कर दिया था। कृष्ण ने कहा कि वो उसे ज्ञान देंगे। अर्जुन ज्ञान लेने लगा, सवाल करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अब वो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के सामने नतमस्तक खड़ा है।

हाथ जोड़ के आश्चर्य से भरा हुआ अर्जुन कृष्ण में सारे देवता अनेक भूतों के समुदायों को कमल के आसन पर विराजित हुए ब्रह्मा को महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा है। दोस्तों, ऐसा ही तो कृष्ण ने अपना रूप बताया था ना, तो जो बताया था सो वो सामने है। अनेकों अनेक भुजा, अनेक पेट, न जाने कितने मुख और अनेक नेत्र, यानी कि सब ओर से अनंत कृष्ण का विराट रूप जैसे हर दिशा में है। यह बताना मुश्किल हो जाएगा कि इस रूप की शुरुआत कहां से हो रही है, कहां इसका मध्य और कहां इस रूप का अंत हो रहा है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही।

अर्जुन किसी तरह से शब्दों में अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहता है, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देखता हूं। सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य देखता हूं। दोस्तों, क्योंकि कृष्ण का न तो ओर था न छोर, वे हर तरफ थे, इसीलिए हर तरफ से हाथ गदा उठाए हुए, अनगिनत मुख अनगिनत मुकुट पहने हुए और हर ओर से ही वो सुदर्शन चक्र उठाए हुए दिख रहे थे। हजारों सूर्य की रोशनी कृष्ण को तेज के पुंज के रूप में प्रस्तुत कर रही थी।

अब उसी को देख अर्जुन का अंतःकरण कृष्ण को जान रहा था। कृष्ण ने कहा था कि वो परम अक्षर हैं, यानी कि जिसका क्षय नहीं होता, जो नाश रहित है। कृष्ण ने यह भी बताया था कि जब कुछ नहीं था तब वो थे। कृष्ण उस समय को भी जानते हैं जब अर्जुन नहीं था, और आने वाले उस समय को भी जो अभी आया नहीं है। इसीलिए अर्जुन कृष्ण को इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक, अविनाशी सनातन पुरुष हैं ऐसा बता रहा है। कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर अब अर्जुन समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सनातन पुरुष हैं। चारों तरफ उनका मुख, उनके हाथ हैं, हर तरफ सिर्फ कृष्ण हैं, कृष्ण हैं, कृष्ण हैं, और कुछ भी नहीं।

अर्जुन कृष्ण के रूप का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि जिसका न आदि दिखता है न अंत दिखता है और मध्य भी नहीं दिखता, ऐसे रूप वाले को मैं जगत को पालते हुए देख रहा हूं। मैं देख सकता हूं कि कृष्ण का यह रूप अनंत सामर्थ्य से युक्त, यानी कि ये कुछ भी करने में समर्थ है। इस रूप की अनेकों अनेक भुजाएं हैं, चंद्र और सूर्य के जैसे नेत्र और मुख कैसे प्रज्वलित हो रखे हैं, इतना प्रकाश है कि बताना मुश्किल है। कृष्ण का ये तेज पूरे जगत का पालन पोषण करता हुआ दिख रहा है।

जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो नीचे धरती, बीच में वायु और ऊपर आकाश दिखता है। इन तीनों के बीच की दुनिया दिखती है, इसमें विचरते हुए प्राणी दिखते हैं। अब एक ऐसे दृश्य की कल्पना करने का प्रयास करिए दोस्तों कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं कृष्ण से ही परिपूर्ण है। कहने का अर्थ है कि आपकी दृष्टि जिधर भी जाए आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही दिखाई दें। ऐसा रूप अलौकिक है जो इस लोक का नहीं और साथ में बेहद भयंकर भी है। इतना भयंकर है कि तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं।

अर्जुन कृष्ण के विराट रूप को देख अपनी समझ से उसका वर्णन कर रहे हैं। धरती से आकाश तक जितनी ही दिशाएं हैं उनमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं। अर्जुन आगे बताते हैं कि देवताओं के समूह कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से भयभीत होकर हाथ जोड़े कृष्ण के नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। न जाने कितने ही महर्षि और सिद्ध पुरुषों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। चराचर जगत हो या कि देवता, सब कृष्ण से उत्पत्ति पाते हैं और उसी में प्रवेश कर जाते हैं।

ऐसा कहते हैं कि कालांतर में शिव 11 रुद्रों के रूप में प्रकट हुए थे और इनका काम था देवताओं की रक्षा करना। इसी तरह से आदित्य और वसु भी देवता हैं। अर्जुन जो कृष्ण का विराट रूप देख रहा है उसमें ये 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु और इनके अलावा साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय। इतना ही नहीं, इनके अलावा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय ये सब विस्मित होकर कृष्ण को देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कृष्ण के रूप को देख क्या मनुष्य और क्या देवता सब विस्मित ही हो सकते हैं।

बड़े प्यारे लगते हैं अपने बाल रूप में कृष्ण, या जब वो गोपियों के साथ रास करते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई है उनका ये विराट रूप। और इस रूप की खासियत ये है कि ये विराट तो है, उससे भी ज्यादा विकराल है। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। दोस्तों, बेचैन है हर कोई इस काल रूप को देख के।

कृष्ण के विराट रूप में मुख ऐसा है कि धरती से शुरू हो आकाश तक जा रहा है, मुख से एक ज्योति निकल रही है। दोस्तों, सब कुछ इल्यूमिनेटेड है, प्रकाश से भरे नेत्र हर तरफ देख रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान की एक झलक पाते ही मन में शांति आ जाती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। कृष्ण को देख अर्जुन भयभीत हो रहा है और उसका अंतःकरण धीरज और शांति को खो रहा है। कृष्ण में सारे काल सारे लोक समाए हैं। दोस्तों, ये बातें बोलने में तो शब्द हैं, लेकिन यथार्थ में ये सब अति भयंकर होता है।

भयंकर और विकराल रूप चारों तरफ फैला हुआ है। हर तरफ ही मुख है, हर तरफ ही भुजाएं हैं। इस वजह से अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसका दिशा बोध खत्म हो गया है। हमारी दृष्टि का एक केंद्र बिंदु होता है, उसके चारों तरफ की दुनिया हमें समझ में आती है, लेकिन जब कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं होती तो समझें कैसे। जैसे समुद्र में होता है चारों तरफ पानी ही पानी, और अगर आसमान में भी बादल हो तो कौन सी दिशा कहां है कुछ समझ में नहीं आता। यही हालत अर्जुन की थी दोस्तों।

अभी तक तो अर्जुन को रुद्र, आदित्य, वसु और देवता दिख रहे थे, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा दिख रहा है जो और भी विस्मयकारी है। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनका साथ दे रहे राजाओं के समुदाय सब कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण स्वयं अर्जुन के पक्ष के राजा और योद्धा भी विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। मुख में जाते हुए वो चकनाचूर हो गए हैं। कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित कृष्ण के दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। दृश्य ऐसा है कि सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन तो स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब प्रत्यक्ष देख रहा था। ऐसा ही उसने चाहा था दोस्तों, और ऐसा ही कृष्ण ने उसे दिखाया।

नदियां कैसे दौड़ती हुई समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे वही उनकी नियति हो, और एक नहीं अनेक नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, ऐसे ही ये नर लोक के वीर जो महाभारत के महान धर्म युद्ध में भाग लेने आए हैं, ये सभी योद्धा कृष्ण के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन का यथार्थ क्रूर रूप से अर्जुन और हमारे सामने पेश हो रहा है। यही तो कृष्ण ने कहा भी था कि एक दिन सब उनको ही प्राप्त हो जाते हैं। योद्धा जब अपना कर्म करते हुए लड़ते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो वो भी कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं, और ऐसा ही यहां भी हो रहा है।

ज्योति को देख पतंगा कैसे उड़ता हुआ आता है और नष्ट हो जाता है। ऐसा सदियों से, शायद प्रकृति की शुरुआत से हो रहा है। दोस्तों, ये मोह कैसा होता है जो पतंगे को ज्योति की तरफ खींच के ले आता है? साइंस के पास इसका जवाब अवश्य होगा, लेकिन कृष्ण ने बताया कि हर किसी का स्वभाव उनके संकल्प से होता है। अर्जुन ये देख रहा है कि पतंगों की ही तरह सब इन जलते हुए मुखों में दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। यही तो इन योद्धाओं की भी नियति है, इनका अंत है।

अर्जुन सबसे महान योद्धा है और वो जो दृश्य देख रहा है उससे व्याकुल है, भयभीत है। वो जो देख रहा है उसका वर्णन आसान नहीं। अर्जुन कहता है, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। कृष्ण के अनगिनत मुखों से निकलती अग्नि से सब कुछ तप

चुका है। जितने भी योद्धा इन मुखों की तरफ तेज गति से आ रहे हैं, इन सबको खाते हुए ये मुख साथ में उनको चाट भी रहे हैं। दृश्य भयानक और विकराल होने के साथ विभस्त भी है।

व्याकुल और परेशान हो अर्जुन आखिर पूछ ही बैठता है, प्रभु मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कृष्ण से विनती की थी कि वो उनका विश्व रूप देखना चाहता है, लेकिन यहां उल्टा हो गया। जिज्ञासा शांत तो नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। उसके मन में कितने ही प्रश्न आ गए, सबसे बड़ा कि वो कृष्ण की प्रवृत्ति को जानना चाहता है।

श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हुए बताते हैं कि वे लोकों का नाश करने वाले महाकाल हैं और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इसी बात से कृष्ण का ज्ञान शुरू हुआ था कि अर्जुन जिनके लिए शोक करता है ऐसा नहीं कि उनके युद्ध ना करने से वो बच जाएंगे, अगर उनका मरना युद्ध की नियति है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। और दोस्तों ऐसा यहां हो भी रहा है।

कृष्ण अर्जुन को उठने के लिए कहते हैं। वो उसे सलाह देते हैं कि युद्ध करके यश को प्राप्त कर, युद्ध करके शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज को भोग, क्योंकि ये सब शूरवीर पहले ही से कृष्ण के द्वारा मारे हुए हैं। कृष्ण अर्जुन को हे सव्यसाचिन कहकर के उद्बोध करते हैं। दोस्तों, अर्जुन क्योंकि बाएं हाथ से भी बाण चला लेते थे, इसलिए उनका नाम सव्यसाची भी हुआ था। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। कृष्ण इन योद्धाओं को मार चुके हैं, अर्जुन को तो केवल निमित्त बनना है। और दोस्तों, हमें भी अर्जुन की तरह निमित्त बन अपना कर्म और अपना कर्तव्य निभाना है।

अर्जुन ने जब देखा कि उसे अपने गुरु, मामा, चाचा, ताऊ, पितामह के ऊपर बाण चलाने पड़ेंगे, उन्हें मारना पड़ेगा, तो वो विषाद से भर गया था। अपना धनुष एक तरफ रख वो दुख में बैठ गया था। कृष्ण उसे यही समझा रहे हैं कि द्रोणाचार्य, भीष्म, पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से शूर वीर योद्धाओं को कृष्ण पहले ही मार चुके हैं, जो कि अर्जुन इस समय खुद देख भी रहा है। इसीलिए वो अर्जुन को युद्ध करने को कह रहे हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, तू मार, भय मत कर, निःसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर।

संजय कहते हैं, केशव भगवान की इन बातों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन अपने हाथ जोड़ लेता है, कांपते हुए नमस्कार करता है। दिख रहा है कि अर्जुन अत्यंत ही भयभीत है और इसी डरी हुई हालत में कृष्ण को प्रणाम करते हुए वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने जो देखा वो तो अकल्पनीय से भी परे है, ऐसा सोचना तो दूर, ऐसे किसी विचार के आसपास भी कभी अर्जुन नहीं पहुंच पाया था। अर्जुन क्या कोई भी नहीं पहुंचा था, सैकड़ों हजारों सालों में बस कुछ गिनती के ज्ञानी ही होंगे जिन्हें भगवान के इस रूप के बारे में पता होगा, वरना अर्जुन और मेरे आपके जैसे लोग तो बस अपने जीवन में इतना लगे रहते हैं कि ईश्वर के विराट रूप के बारे में कभी सोचते ही नहीं।

घाह। डरे और सहमे हुए कांपते हुए अर्जुन कहता है, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, ये एकदम ठीक ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। दोस्तों, अर्जुन भाव विभोर हो चुके हैं, जो देखा है उससे वो इतने ज्यादा इंप्रेस्ड हैं कि कुछ कहने के लायक नहीं बचे हैं। वे अपनी बची हुई हिम्मत जुटाकर कृष्ण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं।

अर्जुन कृष्ण को ब्रह्मा के भी आदिकर्ता कह के संबोधित करता है। वो कहता है कि कृष्ण क्योंकि सबसे बड़े हैं तो उनको वो कैसे नमस्कार न करें। अर्जुन अब समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सत और असत से परे हैं। अर्जुन समझ रहा है कि कृष्ण अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। एक होता है सुना हुआ, किताबों से हासिल हुआ ज्ञान, और एक होता है दोस्तों प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो थियरी तो दिलचस्प थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन जब अर्जुन ने साक्षात देखा, ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का रूप उसके सामने है।

कृष्ण आदि देव और सनातन पुरुष हैं। सबसे आदि में जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे, वो आज भी हैं और इस सृष्टि के बाद भी होंगे। इसी से वो सनातन होते हैं। हमारा और आपका ज्ञान सांसारिक है, यानी कि वर्ल्डली। हमारी सारी साइंस पिछले कई सौ सालों से तरक्की करती हुई अभी भी इस ब्रह्मांड की सच्चाई ढूंढ रही है, और वही सच्चाई अब सामने आ रही है जो हजारों साल पुराने इन धर्म ग्रंथों में, गीता में लिखी हुई है। ऐसा कैसे हुआ? तो क्या यह ज्ञान हमारे आज के ज्ञान से भी ऊपर है? दोस्तों, जरा सोच के देखिएगा।

कृष्ण का साक्षात विराट रूप देख अर्जुन अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो स्वयं को नियंत्रण में लाते हुए समझ रहा है कि आखिर कृष्ण क्या है। वो कृष्ण को कहता है कि आप तो वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो प्रभु। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। भावनाएं तो नियंत्रण में आ जाएंगी, लेकिन अर्जुन समझ रहा है कि उसने जो कृष्ण का असली रूप देखा है वो नियंत्रण में शायद कभी ना आए। ऐसा भयंकर, ऐसा विशाल, ऐसे स्वरूप को तो बस आप नमस्कार ही कर सकते हैं। अर्जुन आगे कहता है, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं।

अब अर्जुन को याद आ रहा है कि वो कैसे कृष्ण को अपना मित्र मान उनके साथ अठखेली किया करता था। वो कहता है कि उनके इस प्रभाव को वो नहीं जानता था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि उसने कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहा। अर्जुन कहता है कि ये सब उसने बिना सोचे समझे हठात कहा है, विनोद करते हुए, सोते हुए, बैठे हुए और भोजनादि के समय अकेले में या उन सखाओं के सामने भी अगर उसने कृष्ण को कभी गलती से अपमानित किया तो वो उसके लिए शर्मिंदा है। वो सब अपराध प्रेम में बिना सोचे समझे किए गए थे। उसके लिए अर्जुन कृष्ण से क्षमा मांग रहा है।

अर्जुन अब अपने होश में वापस आ रहा है और समझ रहा है कि जिसके साथ वो दोस्त की तरह सखा की तरह व्यवहार करता था वो तो इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु हैं। उनका भयंकर रूप ऐसा है जिसमें सारे शूर वीर समाते जा रहे हैं क्योंकि वो काल में समा रहे हैं। कृष्ण अनुपम प्रभाव वाले हैं, यानी कि कृष्ण का ऐसा प्रभाव है जिसकी कोई उपमा नहीं। अर्जुन कहता है कि तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अर्जुन कृष्ण को जो समझता था कृष्ण वो नहीं, ये अब अर्जुन जान चुका है।

कभी गलती से किसी बड़े या किसी सम्मानित से आप बुरा बर्ताव करें ना दोस्तों, तो वो कुछ भी ना कहें तो बड़ी ग्लानी होती है, गिल्टी महसूस होता है। बस ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हो रहा है। अर्जुन कृष्ण के चरणों में निवेदन कर रहा है कि स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अर्जुन के जैसे ही अगर कभी हमें भी अपनी गलती का एहसास हो ना दोस्तों, तो माफी मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए।

अर्जुन डरा हुआ भी है, अर्जुन अपराध बोध में भी है, लेकिन साथ ही साथ वो बेहद बेहद बेहद प्रसन्न भी है। कृष्ण के इस आश्चर्यमय रूप को देखकर वो खुश कैसे ना हो। अलग अलग अनुभवों का एक कोलाहल चल रहा है अर्जुन के अंदर। ये कृष्ण के विराट रूप का ही तो कमाल है। अब सोचिए कि हम जो अपनी कार, घर या पैसे से ली गई चीजों को देखकर खुश होते हैं, उसके सामने इस खुशी को रखिए। ऐसा ही होता है सच्चा ज्ञान दोस्तों। अर्जुन अब चाहता है कि श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज विष्णु रूप उसे दिखलाएं।

हमारी इस दुनिया की खुशियां इतनी छोटी और क्षणभंगुर हैं कि असली ज्ञान के सामने उनकी कोई तुलना नहीं। वो ही असली आनंद होता है। इसीलिए धरती को दुख का घर भी कहा गया है, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लें, अंत में दुख ही जीतता है। और वो इसलिए क्योंकि आप अपने अज्ञान को हटाकर उस परमात्मा के असली रूप को नहीं देखना चाहते। इसीलिए ये गीता रची गई है दोस्तों। परमात्मा के इसी रूप को अब अर्जुन चतुर्भुज यानी कि मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता है।

अर्जुन कृष्ण को बहुत प्यारे थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पांडवों में मैं धनंजय हूं। इसी प्रेमवश श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरे परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझे दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। क्या कमाल है दोस्तों कि अर्जुन से पहले कृष्ण का यह विराट रूप किसी ने नहीं देखा था, लेकिन

कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य लोक में उनका यह विश्व रूप न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से देखा जा सकता है। अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई भी कृष्ण का ये रूप नहीं देख सकता। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कृष्ण अपना विराट रूप इस तरह से दिखा रहे हैं। अर्जुन जो डर गया था, जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, जो खुद को शक्तिहीन मानकर युद्ध के बीचों बीच बैठ गया था, आज उसको प्रभु ने ऐसा रूप दिखाया है जो पहले कभी कोई नहीं देख पाया था। वो इसलिए क्योंकि अर्जुन अपने अज्ञान से बाहर आ रहा था।

कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उनके इस विकराल रूप को देखकर उसको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं, जो आज तक कभी नहीं। अर्जुन अकेला ऐसा विरला है जिसको कृष्ण का ऐसा रूप देखने को मिला, तो यह तो कोई व्याकुल होने की बात नहीं हुई। कृष्ण आगे कहते हैं, तू भय रहित और प्रीत युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख। अब कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं दोस्तों, यानी कि चार भुजाओं वाला, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए भगवान प्रकट होते हैं।

संजय कुरुक्षेत्र से अपना आंखों देखा हाल बताते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं, और सिर्फ अपना ये चार भुजाओं वाला रूप ही नहीं दिखा रहे, बल्कि साथ में उसे धीरज भी दे रहे हैं कि अर्जुन डरे नहीं, व्याकुल ना हो। यह सब तो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए किया। अपनी एक एक बात कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए बताई कि अर्जुन अपनी अज्ञानता से बाहर आ सके, अपने मन में छुपी अज्ञानता की परत को हटाकर अपनी आत्मा के समक्ष हो, वो भगवान का रूप पहचान सकें।

भगवान के विकराल रूप को देख करके जो उसे घबराहट हुई थी, जिसका बयान करके अर्जुन सहम गया था, वो स्थिति अब सामान्य हो रही है। कृष्ण के वचन मलहम का काम कर रहे हैं, अर्जुन को शांत कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। दोस्तों, अर्जुन का चित्त अब शांत है। उत्तेजना जो डर के साथ आई थी वो अब जा चुकी है। आंखों के सामने ऐसी छवि है तो चित्त को तो शांत होना ही था। रूप विकराल से बदलकर अब चतुर्भुज हो चुका था।

0: कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका जो ये चतुर्भुज रूप उसने दिखेगा।
1: इस प्रोग्राम का सबसे ताजा तरीन एपिसोड लेके हम हाजिर हैं और हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं अर्चुरानो 16 यानी अर्चना अग्रवाल और मेल सिंगर अनुराग। आप दोनों का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है इस खास आयोजन में। आवाज, गीत और संगीत, इन तीनों से हो जाए जब प्यार, या यूं कहें कि इन तीनों का जब हो जाए मेल, तो उसको क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे सच में योग। क्योंकि हम गाते हैं तो हमारी धड़कनें, हमारी सांसें जो संगीत के साथ चलती है, रुकती है, ठहरती है और जो व्यायाम करती है, वो सच में योग ही तो है। आपने सोचा कभी इस तरफ? तभी तो संगीत को एक तरह की थेरेपी कहा जाता है। आज मंगलवार भी है तो क्यों ना पहले अर्चुरानो 16 से सुन लिया जाए ये हनुमान भजन।

योग दिवस है, संगीत का दिन है और ये सारी चीजें हम उनसे सीखते हैं जो या तो पिता होते हैं या पिता तुल्य होते हैं। तो आज एक साथ

तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। और हम ये कहते हैं योग दिवस पर कि तुम जो योग करोगे संगीत का, तो सच में सांस को रोक लोगे, और सांस को रोक लोगे तो आपकी उम्र लंबी होगी। इसलिए गीत बहुत जरूरी है, संगीत बहुत जरूरी है। ये ऐसी दवा है जिसे खाना नहीं पड़ता, गाना पड़ता है। और आप गा सकते हैं तो इस मंच पर आ सकते हैं। अचुरानो और सिंपल पीस की आवाजों में आपने सुना ये सुरीला नगमा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। आवाज की बात, गीत की बात, संगीत की बात। और मिल जाएं इस तरह जैसे दो लहरें हो उस तरह, लेकिन मिलना, और मिलने का नाम ही तो योग है, और वो आसान नहीं है। उसके लिए कुछ श्रम करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और गीत के माध्यम से मेहनत कर रही है हमारी जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुरानो 16। और अगले गीत में कह रहे हैं मनोज जोली अर्चुरानो के संग, मंजिलें मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। आइए सुनते हैं।

चुरानों का साथ दे रहे थे मनोज चौली। और अब इस मंच पर आ गए हैं अचुरानू 16 का साथ देने इस गीत में राम जायसवाल। आप सुन रहे हैं

इसलिए हम कहते हैं कि यदि आप योग करेंगे तो फिट रहेंगे, जवान रहेंगे, और जवान रहेंगे, फिट रहेंगे तो गीत गाएंगे और गीत हम तक पहुंचाएंगे, गीत सुनाएंगे। आपको शुभकामनाएं गीतों के लिए, आज के दिन के लिए। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। और अब अर्चुरानू के संग बबलू आर्या।

बबलू आ रही है और अर्चुरानो 16 की आवाजों में आपने सुना ये सुरीला सॉन्ग। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, पर तेरे बगैर

और गुरु मंत्र को दोहराना है तो सच में जरूरी है, बहुत जरूरी है योग करना। आज का ये प्रोग्राम योग दिवस को समर्पित था और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर, जिसे आप अनुराग के नाम से जानते हैं। गीतों के प्रति अनुराग, उनका प्यार देखते देखते इतना बढ़ गया है कि अनुराग से सच में उनको राग कहने का मन करता है। जो गाने का अंदाज आया है, जो गाने की अदाई है, उसको हमारी तरह आपने भी महसूस किया होगा। आइए सुनते हैं अनुराग का इस प्रोग्राम का पहला।

चांदनी रात है तू मेरे साथ है और गीतों की बात है और आज हम गीत सुना रहे हैं आपको जयपुर रेडियो के प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के मेल सिंगर अनुराग सेना की आवाज में।

सपना वो हो जाए पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है और ये दुआ कर रहे हैं। इस मंच पर अनुराग, इस मंच के मेल सिंगर, प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और इस मंच पर गीत लेके आते हैं अनुराग और अर्चुरानो 16। आपकी आवाज, आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड का ये सुरीला मंच हमारे श्रोताओं के लिए। आइए सुनते हैं अगले गीत में क्या कहने जा रहे हैं अनुराग।

ये रोग ला इलाज है, फिर भी कुछ कराओ। और हम तो यही कहते हैं कि कुछ नहीं, सिर्फ योग करने की जरूरत है, योग से सारे इलाज हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और इस मंच पर आवाज है जिसे आप सुन रहे हैं, अनुराग सिन्हा की। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आइए सुने अगली गजल, आवाज अनुराग की।

बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। अनुराग गा रहे थे ये सुरीली गजल। कैसी लगी आपको अनुराग की आवाज? आपकी आवाज आपकी पहचान। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। और ये गम का गीत नहीं है और ना ही छुपाने वाली बात है, क्योंकि हम इस मंच पर आपके साथ हैं जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के हमारे दो मेहमान अचुराम 60 और अनुराग का हम करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और कहते हैं सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार आपकी आवाज आपकी पहचान। हमें अनुमति ने इस प्रोग्राम से बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आप सबके लिए और आज के लिए ये गीत।

जी की जय। राम उत्पन्न हठहर के बचान धरे राम उत्पन्न आसक जिन शोक हरियो सीता को तुलसी संकट क्यों न कटे जब ध्यान धरे हनुमान जी की को। बोलो हनुमान जी की जय। हनुमान जी का प्यारा भजन।

कटील रंगीन बने जो जिन मान मत्यो गरलंक पति को एटी पताल हट्यो अहि रावण जिन देख तेज हट्यो शक्ति को अंजनि पुत्र श्री राम उपासक जिन शोक हर्यो सीता को तुलसी संकट क्यों न कटे जब ध्यान धरे हनुमान जी की को। बोलो हनुमान जी की जय। हनुमान जी का प्यारा भजन।

0: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रेरणा का प्यार भरा नमस्कार। 1943 में बर्मा के रंगून से एक काफिला पैदल ही भारत की ओर चल निकला। न खाने के लिए भरपेट खाना, न पहनने के लिए ढंग के कपड़े। चलते चलते असम के डिब्रूगढ़ आ पहुंचा और उस काफिले के साथ आई भारतीय फिल्म जगत की एक बेहतरीन नृत्यांगना। आज इस स्पेशल पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की डांसिंग क्वीन हेलेन जी की। तो शो की शुरुआत करेंगे फिल्म कारवां के इस प्रसिद्ध गीत के साथ। देखो देखो वो आ गई। आइए चारुल, आपको ही बुला रही हूँ।

थे और माताजी मैडलिन एक बर्मीज मूल की महिला थीं। 21 नवंबर 1938 की रोज बर्मा के रंगून में जन्मी हेलेन जी चार भाई बहनों में से एक थीं। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका जी को, जो लेकर आ रही हैं फिल्म डॉन का गीत, जिसकी मूल गायिका हैं आशा जी और गीत के बोल हैं ये मेरा दिल प्यार का दीवाना।

दोस्तों, दुर्भाग्यवश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेलन जी के पिताजी चल बसे और उनकी माता जी ने एक काफिले के साथ भारत में शरण लेने का फैसला किया। ये काफिला चला तब 1000

दोस्तों, कोलकाता में हेलन जी की माँ एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती थी, लेकिन थोड़े से वेतन में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। दुर्भाग्यवश हेलन जी को अपनी स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी और 1950 में तंगहाली से परेशान होकर इस परिवार ने सपनों की नगरी मुंबई का रुख किया। तब किसी को नहीं पता था कि हेलन ये नाम एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। आगे बुलाना चाहूंगी संतोष जी और इंदु जी को, जो लेकर आ रहे हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, छोड़कर तेरे प्यार का दामन। आइए बुलाएं उनको।

धीरे धीरे हेलन जी को बहैसियत सोलो डांसर काम मिलने लगा, जिनमें कुछ फिल्में थी 1954 की अलिफ लैला और हूरे अरब। पर उनको अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला 1958 की हावड़ा ब्रिज के गीत मेरा नाम चिंचिन चू से। इसके बाद किस्मत ऐसी पलटी कि हेलन जी ने कभी पलट के नहीं देखा। सभी मशहूर मारूफ मेकर्स हेलन जी को अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे। कार्यक्रम में आगे आ रहे हैं प्रणव जी और तनुजा जी, जो लेकर आएंगे फिल्म द ट्रेन का ये दमदार गीत। गीत के बोल हैं, ओ मेरी जा मैंने कहा, जिसे मूल रूप से आर डी बर्मन साहब और आशा जी ने गाया था।

शुरुआती दौर में गीता दत्त जी हेलन जी की आवाज बनी, पर 60 और 70 के दशक में आशा जी हेलन जी की आवाज बन के उभरी। जिस फिल्म में डांस सीक्वेंस हो वहाँ हेलन जी का होना जरूरी होता था, और जहाँ हेलन जी का डांस हो वहाँ आशा जी की आवाज का होना लाजमी हो जाता था। इस जोड़ी ने एक साथ इतने सारे खूबसूरत मशहूर नगमे दिए हैं, जिसमें से एक है आओ ना गले लगाओ ना, लेकर आ रही हैं तानिया शोम जी।

चलन जी ने अपने 50 साल के करियर में कई फिल्मों में अभिनय भी किया, जैसे गुमनाम, चाचा चा, सच्चाई, डॉन, दोस्ताना, हम दिल दे चुके सनम, खामोशी द म्यूजिकल और लहू के दो रंग, जिसके लिए उन्हें 1979 का फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। पर हेलन जी के डांस का जादू ऐसा था कि जब लता जी ने अपना पहला और एकमात्र कैबरे सॉन्ग रिकॉर्ड किया, वो इसी शर्त पे किया कि पर्दे पर हेलन जी हों। फिल्म इंतकाम का वो गीत लेकर आ रही हैं मेघा जी।

दोस्तों, इन सब बातों के साथ ही हेलेन जी के निजी जीवन में भी तब्दीलियां आ रही थी। 1962 में वे एक फिल्म के सेट पर सलीम खान साहब से मिली और 1981 में इन दोनों ने शादी कर ली। इस तरह हेलेन जी एक भरे पूरे परिवार का अटूट हिस्सा बन गई। कार्यक्रम में आगे मैं बुलाना चाहूंगी देवयानी जी और राजश्री जी को, जो लेकर आ रही हैं 1977 की फिल्म इंकार का ये धमाकेदार गाना।

हेलन जी ने लगभग 700 फिल्मों में काम किया और साथ ही लंदन, पेरिस और कई अन्य देशों में अनगिनत स्टेज शोज किए। 1973 में मर्चेंट आइवरी फिल्म्स ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हेलन द क्वीन ऑफ नॉच। इसके साथ ही लेखक जेरी पिंटो ने 2006 में उनके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन एच बॉम्ब। इस किताब के लिए जेरी पिंटो को नेशनल अवार्ड भी मिला। हेलन जी को 1999 में फिल्मफेयर ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया और 2009 में पद्मश्री सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया। अब मैं प्रेरणा लेकर आ रही हूँ फिल्म ज्वेल थीफ का ये खूबसूरत गीत।

0: और उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ ही मैं प्रेरणा आपसे इजाजत चाहूंगी, अगले हफ्ते फिर मिल।
1: आपकी आवाज, आपकी पहचान।

0: आओ झूमें गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रेरणा का प्यार भरा नमस्कार। 1943 में बर्मा के रंगून से एक काफिला पैदल ही भारत की ओर चल निकला। न खाने के लिए भरपेट खाना, न पहनने के लिए ढंग के कपड़े। चलते चलते असम के डिब्रूगढ़ आ पहुंचा और उस काफिले के साथ आई भारतीय फिल्म जगत की एक बेहतरीन नृत्यांगना। आज इस स्पेशल पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की डांसिंग क्वीन हेलन जी की। तो शो की शुरुआत करेंगे फिल्म कारवां के इस प्रसिद्ध गीत के साथ। देखो देखो वो आ गई। आइए चारुल, आपको ही बुला रही हूँ।

का पूरा नाम है हेलेन एन रिचर्डसन। उनके पिताजी जॉर्ज डेजमियर एक एंग्लो इंडियन थे और माताजी मैडलिन एक बर्मीज मूल की महिला थीं। 21 नवंबर 1938 की रोज बर्मा के रंगून में जन्मी हेलेन जी चार भाई बहनों में से एक थीं। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका जी को, जो लेकर आ रही हैं फिल्म डॉन का गीत, जिसकी मूल गायिका हैं आशा जी और गीत के बोल हैं ये मेरा दिल प्यार का दीवाना।

दोस्तों, दुर्भाग्यवश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेलन जी के पिताजी चल बसे और उनकी माताजी ने एक काफिले के साथ भारत में शरण लेने का फैसला किया। ये काफिला चला तब हजार लोगों का था, लेकिन डिब्रूगढ़ पहुंचते पहुंचते संख्या में बस आधे ही रह गए थे। छोटी हेलन और उनका परिवार ब्रिटिश आर्मी की सहायता से 1945 में कोलकाता में जा बसे। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मंदार जी और धनश्री जी को, जो गा रहे हैं ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां।

दोस्तों, कोलकाता में हेलन जी की माँ एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती थी, लेकिन थोड़े से वेतन में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। दुर्भाग्यवश हेलन जी को अपनी स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी और 1950 में तंगहाली से परेशान होकर इस परिवार ने सपनों की नगरी मुंबई का रुख किया। तब किसी को नहीं पता था कि हेलन ये नाम एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। आगे बुलाना चाहूंगी संतोष जी और इंदु जी को, जो लेकर आ रहे हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, छोड़कर तेरे प्यार का दामन। आइए बुलाएं उनको।

धीरे धीरे हेलन जी को बहैसियत सोलो डांसर काम मिलने लगा, जिनमें कुछ फिल्में थीं 1954 की अलिफ लैला और हूरे अरब। पर उनको अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला 1958 की हावड़ा ब्रिज के गीत मेरा नाम चिंचिन चू से। इसके बाद किस्मत ऐसी पलटी कि हेलन जी ने कभी पलट के नहीं देखा। सभी मशहूर मारूफ मेकर्स हेलन जी को अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे। कार्यक्रम में आगे आ रहे हैं प्रणव जी और तनुजा जी, जो लेकर आएंगे फिल्म द ट्रेन का ये दमदार गीत। गीत के बोल हैं, ओ मेरी जा मैंने कहा, जिसे मूल रूप से आर डी बर्मन साहब और आशा जी ने गाया था।

शुरुआती दौर में गीता दत्त जी हेलन जी की आवाज बनी, पर 60 और 70 के दशक में आशा जी हेलन जी की आवाज बनकर उभरी। जिस फिल्म में डांस सीक्वेंस हो वहाँ हेलन जी का होना जरूरी होता था, और जहाँ हेलन जी का डांस हो वहाँ आशा जी की आवाज का होना लाजमी हो जाता था। इस जोड़ी ने एक साथ इतने सारे खूबसूरत मशहूर नगमे दिए हैं, जिसमें से एक है आओ ना गले लगाओ ना, लेकर आ रही हैं तानिया शोम जी।

चलन जी ने अपने 50 साल के करियर में कई फिल्मों में अभिनय भी किया, जैसे गुमनाम, चाचा चा, सच्चाई, डॉन, दोस्ताना, हम दिल दे चुके सनम, खामोशी द म्यूजिकल और लहू के दो रंग, जिसके लिए उन्हें 1979 का फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। पर हेलन जी के डांस का जादू ऐसा था कि जब लता जी ने अपना पहला और एकमात्र कैबरे सॉन्ग रिकॉर्ड किया, वो इसी शर्त पे किया कि पर्दे पर हेलन जी हों। फिल्म इंतकाम का वो गीत लेकर आ रही हैं मेघा जी।

दोस्तों, इन सब बातों के साथ ही हेलेन जी के निजी जीवन में भी तब्दीलियां आ रही थीं। 1962 में वे एक फिल्म के सेट पर सलीम खान साहब से मिली और 1981 में इन दोनों ने शादी कर ली। इस तरह हेलेन जी एक भरे पूरे परिवार का अटूट हिस्सा बन गई। कार्यक्रम में आगे मैं बुलाना चाहूंगी देवयानी जी और राजश्री जी को, जो लेकर आ रही हैं 1977 की फिल्म इनकार का ये धमाकेदार गाना।

जी ने लगभग 700 फिल्मों में काम किया और साथ ही लंदन, पेरिस और कई अन्य देशों में अनगिनत स्टेज शोज किए। 1973 में मर्चेंट आइवरी फिल्म्स ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हेलेन द क्वीन ऑफ नॉच। इसके साथ ही लेखक जेरी पिंटो ने 2006 में उनके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन एच बॉम्ब। इस किताब के लिए जेरी पिंटो को नेशनल अवार्ड भी मिला। हेलेन जी को 1999 में फिल्मफेयर ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया और 2009 में पद्मश्री सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया। अब मैं प्रेरणा लेकर आ रही हूँ फिल्म ज्वेल थीफ का ये खूबसूरत गीत।

0: और उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ ही मैं प्रेरणा आपसे इजाजत चाहूंगी, अगले हफ्ते फिर मिल।
1: आपकी आवाज, आपकी पहचान।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम नई आवाज़ नई पहचान, और नई आवाज़ नई पहचान हम उन सिंगर्स को दे रहे हैं ये नाम जो पहली बार इस मंच पर आ रहे हैं। आज हमारे साथ राजस्थान के नोहर तहसील की और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की सुनीता इस मंच पर है। वेलकम है सुनीता, आपका पहली बार इस मंच पर। आप जयपुर रेडियो की प्रोग्राम सुनती हैं और आपका भी मन हुआ कि आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, तो हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आपके गीतों के साथ आपका। नई आवाज़ नई पहचान में हम आज एक ऐसी आवाज़ को लेके आए हैं जो राजस्थान की रहने वाली हैं। राजस्थान में हम कहें तो गंगानगर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में एक तहसील है नोहर। नोहर राजस्थान से हमारे साथ हैं आज की नई आवाज़ युवा आवाज़, जो आपकी आवाज़ आपकी पहचान बनने वाली है आज इस मंच पर, जिसका नाम है नई आवाज़ नई पहचान, आपकी आवाज़ आपकी पहचान, जिस प्रोग्राम को आप रोज़ सुनते हैं शाम 6 बजे जयपुर रेडियो से। तो आज हमारे संग हैं सुनीता। सुनीता वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है आपका। अपना परिचय दें आप हमारे सभी लिसनर्स को, सुनने वालों को।
1: मैं सुनीता हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और मैंने म्यूजिक है वो मतलब बचपन से स्टार्ट कर दिया था
0: जी।
1: और मैंने मेरे पापा से सीखा है म्यूजिक
0: जी।
1: और मैंने म्यूजिक में एमए भी कर रखी है और विशारद भी कर रखी है, और मैं गवर्नमेंट म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रही हूँ अभी।
0: हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। तो आप कौन कौन से गाने आपको पसंद है? गजल गाती हैं कि ठुमरी गाती हैं, या फिर दादरा, या फिर फिल्मी बॉलीवुड म्यूजिक, या लोक संगीत, इसमें आपकी क्या अभिरुचि है वो जरा सा इस पे प्रकाश डालिए जरा सा।
1: मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और नोहर तहसील में रहती हूँ, और वैसे मैं ऑलराउंड सभी प्रकार के सॉन्ग गाती हूँ, फिल्मी गीत भी गाती हूँ, रागे भी गाती हूँ, ठुमरी भी गाती हूँ, और तालों का भी मुझे नॉलेज है। वैसे मैं 3 ताल में गाती हूँ, दादरा में गाती हूँ, रूपक में गाती हूँ।
0: तो कुछ सुनाएंगे आप अपने, वैसे बिना म्यूजिक के, कोई भी 2 लाइनियाँ?
1: काश

ऐसा मंजर हो या ना हो, हम श्रोताओं को जरूर बताएंगे कि ये मंजर जरूर है कि काश नहीं, सच में हमारे साथ हैं सुनीता आज इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई आवाज़ नई पहचान। और इस प्रोग्राम को हमने युवा जो सिंगर्स हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस किया है, तो उनका परिचय हो जाए और हमारे दुनिया भर में जो भी युवा गायक हैं उनको हम इस प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जयपुर रेडियो पूरी दुनिया में सुना जाता है। तो आज आप सब सुनेंगे सुनीता को। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन आपके गीतों के साथ। आइए सुनते हैं आपका पहला गीत। और अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा, पहले पहला गीत तो सुन ले। आवाज सुनीता की हनुमानगढ़ से, हमारे संग युवा सिंगर नई आवाज नई पहचान लेके। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन।

कभी कहा ना किसी से, कभी कहा ना किसी से तुम्हारे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। दुआ बाहर की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना रही मेरे आशियाने को। बहुत ही खूबसूरत नॉन फिल्मी गजल हमने सुनी, जी के एल्बम से ली गई ये गजल, और आवाज हमारी युवा सिंगर सुनीता की, हनुमानगढ़ नोहर राजस्थान से। आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं अगली पेशकश। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। अगले सॉन्ग में सुनीता की आवाज़।

आपकी आवाज़ आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई आवाज़ नई पहचान, और नई बार पहली बार हमारे संग हमारे साथ हैं सुनीता हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ राजस्थान से सुनीता, युवा कलाकार। अपने खूबसूरत स्वर के साथ, आवाज के साथ वेलकम है, अभिनंदन है आपका इस मंच पर।

जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, और जब रेडियो का साया आपके साथ है, आपकी आवाज़, आपकी पहचान आप सुन रहे हैं।

क्लासिकल सुपर सुपर डुपर सॉन्ग, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले तो जिंदगी हो जाए सफल। और सुर में सुर मिलाने के लिए आपको जयपुर रेडियो पर आना ज़रूरी है और वहीं आपका सुर और सुर की साधना सही हो सकती है। और इसके लिए हमने एक स्वर साधना प्रोग्राम भी रखा हुआ है जो रोज़ रात 8 बजे आता है और उस पर हमारी

जयपुर रेडियो की सुरीली सिंगर आपका साथ देती हैं। तो सुर से सुर मिलाने का ये बहुत सुनहरा अवसर है, हम तो यही कहेंगे। और सुर के साथ शब्दों की साधना भी बहुत ज़रूरी है। शब्द और सुर जब दोनों मिल जाते हैं सुनीता, तो बहुत कमाल करते हैं। यानी वो उस ईश्वर, वो जो हमारी साधना का साध्य है, हम उससे मिल जाते हैं, उससे हम एकाकार हो जाते हैं। इसलिए हमें स्वर, शब्द और सुर और उसकी साधना की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इतना प्रयास कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। हमें उम्मीद है कि आपके आवाज़ की रोशनी पूरी दुनिया में फैले और आप यूं ही गाती रहें। बस थोड़ा सा आत्मबल और शक्ति की ज़रूरत है। तो बहुत बधाई हमारी ओर से, और आइए सुनते हैं आपका अगला खूबसूरत गीत। सुनीता हनुमानगढ़ से हमारे साथ, हनुमानगढ़ राजस्थान।

जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है और हम कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं लगा इस शाम का लंबी है कि नहीं, हमारे श्रोताओं को भी पता नहीं लगा। और अब हम प्रोग्राम के इस मोड़ पर आ पहुंचे हैं कि हमें बताना होगा कि आज आपने नई आवाज नई पहचान में सुना सुनीता को। नोहर तहसील की रहने वाली हैं, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, राजस्थान से आप बिलोंग करती हैं और पहली बार हमारे इस मंच पर आई हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि आपके जो श्रोता हैं जिन्होंने आपके इस प्रोग्राम को सुना और सराहा है, हम उनके नाम भी ले लें। आप हैं केवल कृष्ण शर्मा, गंगानगर राजस्थान से, भट्ट हीना गुजरात से, अनुपमा खुराना दिल्ली से, जय सिंह सीकर से, लोकजीत दास असम से, लक्ष्मी शर्मा मुंबई से, जीना चौधरी हरियाणा से, चित्रा वर्मा, सोनल पारिक जूनागढ़ गुजरात से, सुनील चड्डा पंजाब से, पूजा नाथकर्णी जर्मनी से, ज्योति भावसार भरूच गुजरात से, रुक्मणी लालवानी वडोदरा गुजरात से, मंदाकिनी वडोदरा गुजरात से, महेश रावल वडोदरा गुजरात से, विभूति पंचोली वडोदरा गुजरात से, ओम प्रकाश शर्मा जयपुर राजस्थान से, राजगोड़ मुंबई से, हसीना बानू जयपुर से, संगीता त्यागी बीकानेर राजस्थान से, अनीता दुगड़ नेपाल से, मुस्कान इसरानी जयपुर राजस्थान से, सत्यप्रकाश सिन्हा यूपी से, तेज दान चारण जोधपुर राजस्थान से, राम सिंह यादव जयपुर से, सीमा बजाज दिल्ली से, राजा राम जवर बिश्नोई जोधपुर राजस्थान से और श्याम थाटे, आप सबका आभार और धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने आपके प्रोग्राम को सुना है और सराहा है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ दें हम। और इसके अलावा जिन लोगों ने आपके गीतों को पसंद किया है, हम उनके नाम भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। आप हैं सुषमा गोदरा, कपिल त्रिवेदी, ओम गायकवाड़, गीता बेन, दीपिका त्रिपाठी, राधे राधे, कोलू परवाज, अनुपमा, नीलेश शाह, आशा रानी, सैयद यूनुस, अब्दुल जमाल, सपना चौहान हिमाचल से, संता राय, मीना प्रकाश दिल्ली से, मजहर यूपी से, सचिन यूपी से, अनीसा बेगम बरेली से, एनडी रटवानी गुजरात से, हिमांशु जोधपुर से, शिवनाथ गौड़ दुबई से, कमलेश साहू छत्तीसगढ़ से, नरेंद्र कुमार पंजाब से, योगेश सूरती अहमदाबाद से, विक्की जय जीवन घोष वेस्ट बंगाल से, ध्यानवंती रेखा भाटिया अजमेर राजस्थान से, नेहा रावल, उत्तम सिंह जंघेल, बीना धुरवा, अलीम खान, प्रवीण एम आर व्यास, शिरीश असफी अजमी खान, फैजल मीता ठक्कर छत्तीसगढ़ से, प्रणब नोमेश, जगदीश देवांगन, दोमन ठाकुर, दिलीप विजय, सुरजिता घोष, रघुवंशी, जया बारोट, जयेश बारोट, ज्योति गोमरे, पूनम सिंह बिहार से, सीताराम कागरा और आर के। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं लेकिन अलग अलग डिवाइस से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए सबको शामिल करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि जिन लोगों के नाम हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे। और बहुत धन्यवाद, बहुत हमारी ओर से बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ कि सुनीता आप इसी तरह गाती रहें और स्वर पथ पर यूं ही
हमारी जयपुर रेडियो की सिंगर बनी रहे। बहुत धन्यवाद।

बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सुनीता नौहर तहसील से, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हमारे साथ रही इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नई आवाज़ नई पहचान। फिर मिलते हैं एक नई पहचान, नई शख्सियत के साथ, उभरती हुई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार। आज हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और इस मंच पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर सीमा फूकन के बर्थडे के स्पेशल प्रोग्राम का।

0: तुम्हारे कहने से पहले ही बोल उठी आवाज, हैप्पी बर्थडे टू यू सीमा फोकन। और हमारे साथ यानी जयपुर रेडियो के संग आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं सौरभ मिश्रा जी, आपके को सिंगर, और अपर्णा अच्युता, उन दोनों की ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज के प्रोग्राम में हम सुनेंगे सीमा फोकन की सुरीली आवाज में गाए कुछ गीत, और इसी तरह हम सेलिब्रेट करेंगे इस मंच पर हमारे श्रोताओं के साथ सीमा फोकन का बर्थडे। तो एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। असम में मूल रूप से रहने वाली और आजकल जोधपुर में प्रवास करने वाली सीमा फोकन हमारे साथ। वेलकम है सीमा जी आपका, आपकी आवाज़ आपकी पहचान इस प्रोग्राम में। करते हैं सीमा जी से थोड़ी सी मुलाकात श्रोताओं के साथ।
1: मेरा नाम सीमा फोकन है और मैं भारतवर्ष के सुंदर राज्य असम की निवासी हूँ, लेकिन आजकल राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर में रह रही हूँ। संगीत प्रेम मुझे बचपन से है और संगीत मेरा माता पिता की ही देन है। मैंने पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इन्फोएज इंडिया में कई वर्षों तक कंटेंट राइटर का कार्य बखूबी संभाला है। लॉकडाउन की वजह से घर में रहते हुए काफ़ी वक्त मिला और मुझे एक बार फिर से मौका मिला गीत संगीत की मधुर दुनिया में वापस लौटने का और अपना शौक पूरा करने का। सिंगिंग ऐप के माध्यम से मैंने 2 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की, रोज़ लाइव सिंगिंग भी कर रही हूँ और आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ कि रेडियो जयपुर के लाइव प्रोग्राम में शिरकत कर पा रही हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
0: तो हुजूरे आली, वेलकम है सीमा फोकन का इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और जो मन से कोई काम करता है वो 2 साल में रेडियो सिंगर बन सकता है, और ये सिद्ध कर दिया है हमारी आज की कलाकारा सीमा फोकन ने। तो चलते हैं सितारों की संगीत की दुनिया में। आपकी आवाज़ आपकी पहचान, आज की कलाकार सीमा जोधपुर से।

संगीत का सफर है और हमारे आज के प्रोग्राम की हम सफर हैं सीमा फुकन, मूलतः असम निवासी और आजकल जोधपुर रहती हैं। आज हमारे साथ हैं इस लाइव शो में, जिसका नाम है आज के कलाकार, आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

गुड़ की डली में लिपटी स्वीट सी वॉइस, कमाल की प्रस्तुति। सीमा, बधाई हो बहुत। आपकी आवाज़, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर आज के कलाकार प्रोग्राम। आज हमारे साथ हैं सीमा फूकन, जोधपुर राजस्थान से।

कितना सुख है बंधन में, और प्यार भरी बदली बन के बरस रही है जयपुर रेडियो के आंगन में। सीमा फूकन हमारे साथ हैं, आज आपकी आवाज़ आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

स्वर और संगीत के इस गांव में जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान में आज हमारे साथ सीमा फूकन जोधपुर राजस्थान से। आपकी आवाज आपकी पहचान, बेहद खूबसूरत सुरीली आवाज। आपकी आवाज आपकी पहचान, सीमा फूकन।

ऐसा समान न होता, कुछ भी यहाँ न होता, मेरे हमराई जो तुम न होते। और जयपुर रेडियो की आज की हमराई हैं अपनी शबनमी आवाज लिए हमारे संग सीमा फूकन जोधपुर राजस्थान से। आपकी आवाज़ आपकी पहचान, आइए सुनते हैं आपकी आवाज़ में अगला खूबसूरत नगमा। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, आपकी आवाज़ आपकी पहचान, सीमा फूकन।

वाह, आपने सुना प्रोग्राम आज की कलाकार। हमारी आज की कलाकार रही सीमा फूकन। जयपुर रेडियो की ओर से बहुत शुभकामनाएं आपकी शबनमी मखमली गायकी के लिए। फिर मिलते हैं गीत संगीत की राहों में, आते जाते। सीमा जी, बहुत सारे विशेष हमें प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे लिसनर्स के नाम हैं, हम किस तरह से उनको शामिल करें हमें मालूम नहीं, और वो तरीका भी नहीं आता हमें। दिल्ली से अनुपमा खुराना, गंगानगर से केवल कृष्ण शर्मा, डी के वर्मा बिहार सोपोर से, कामना सिंह बिहार से, चित्रा वर्मा, सोनल पारेख, सुनील चट्टा, पूजा नाटकर्णी जर्मनी से, रुक्मणी लालवानी, विभूति पंचोली, मंदाकिनी शाह, तेज करण गण और अनीता दुगड़ नेपाल से, आपको अपनी ओर से जयपुर रेडियो की सिंगर सीमा फूकन को हैप्पी बर्थडे कह रही है। तो आप तक इन सब की शुभकामनाएं पहुंच गई होंगी, और भी शुभकामनाएं बराबर आ रही हैं, लेकिन समय अभाव की वजह से हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर सीमा फूकन को, जयपुर रेडियो की सुरीली सिंगर को, आज के दिन की, जन्मदिन की। धन्यवाद। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम आज के कलाकार, और आज के हमारे सिंगर मेहमान अहमदाबाद गुजरात से नीरज। वेलकम है नीरज, और नीरज लेके आए हैं अपने गीतों में प्यार की कहानी। प्रोग्राम का नाम गीत कहानी, और कैसे कह रहे हैं नीरज अपनी जुबानी, आइए सुनते हैं। रात की बात है, क्या हुआ सुन लीजिए इस शाम को।

बिल्कुल सावन रुत का सवेरा, दुनिया नीरज की गुलजार हुई, मतलब हो गया जिसे आप प्यार कहते हैं। और प्यार तो दीवाना होता ही है, आप भी जानते हैं और मैं भी मानता हूं।

सुनो किसी शायर ने कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, वो छलक जाता है जो पैमाना होता है। और पैमाने में हम आज माप रहे हैं नीरज की आवाज, आपकी आवाज, आपकी पहचान के इस मंच पर। और आ ही जाता है दिल जिस पर आना होता है, और नीरज का दिल गीत कहानी पे आ गया है। और ये गीतों की कहानी लेके अहमदाबाद गुजरात से हमारे संग है, हमारे साथ हैं। देखते हैं नीले नीले अंबर पर चांद क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे थे बातचीत नीला बेन के साथ। बड़ोदरा गुजरात से हमारे इस मंच पर नीला बेन रही। नीला जी को बहुत धन्यवाद और आभार।

यूएसए से मिलिंद पंडित। वेलकम है मिलिंद जी, और बहुत दिनों बाद वो गीत चुन के लाए हैं। मिलिंद जी, जिसमें पल पल चुने जाते हैं, और ये पूरा प्रोग्राम में जो गीत होंगे वो सारे के सारे एक विनम्र गीतों भरी स्वर श्रद्धांजलि होगी। अदाकार, एक्टर, सदाबहार हीरो दिवंगत धर्मेंद्र जी को। आइए पल पल की गिनती गिनते हम भी पल पल बढ़ते हैं, और पहला गीत सुनते हैं हमारे संग हमारे साथ मिलिंद पंडिता यूएसए से। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म ब्लैकमेल में धर्मेंद्र जी और राखी पर फिल्माया गया था और पल पल बन के दिन सप्ताह साल महीने न जाने क्या क्या बनता है और वही पल ऐसा आता है कि हमें और हमसे किसी अपने की दूरी बना लेता है। सच में ये गीत बहुत लाजवाब गीत था और उस वक्त के युवाओं के लिए उनके दिल में हूबहू अपनी रूह के साथ उतर जाता था। हर प्रेमी के दिल में ये गीत बसता रहता था चाहे उसकी आवाज सामने वाले को सुनाई ना दे। और इस गीत को उसी तरह से अभिनेता धर्मेंद्र जी को याद करते हुए हमारे आज के सुरीले सिंगर मिलिंद पंडित यूएसए से लेके आए हैं। आइए सुनते हैं इस हसीन शाम का अगला खूबसूरत गीत।

वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। सच में धर्म जी के फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के बाद में सच में ऐसा लगने लगा कि रोशन हो गया है फिल्म जगत। और दुल्हन एक रात की का ये गीत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रफी साहब ने गाया और इसका संगीत दिया मदन मोहन साहब ने, और इस गीत को लिखा राजा मेहंदी अली खान साहब ने, और इस गीत को हमारे लिए आज इस मंच पर प्रस्तुत किया शिकागो यूएसए से मिलिंद पंडित ने। और अब जो दिल की सुनते हैं वही गीत भी सुनते हैं, आइए हम भी इसी गीत का लुफ्त उठाते हैं।

मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उन्हें कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अकेला रहने दो। और ये एवरग्रीन हिंदी सॉन्ग शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र यानी धर्म जी के साथ फिल्म अनुपमा में हेमंत दा ने गाया था। और कैफी आजमी का ये गीत बहुत ही सुरीला और इसमें खास बात ये कि इसका संगीत भी हेमंत दा ने ही दिया था। और हमारे लिए इस मंच पर धर्म जी को याद करते हुए शिकागो यूएसए से जयपुर रेडियो के सुरीले सिंगर मिलिंद पंडित इस गीत को लेके आए। आइए सुनते हैं, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। और आज हम ख्याल कर रहे हैं धर्म जी का। आवाज फिर वही, मिलिंद पंडिता शिकागो यूएसए से। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच, आइए सुनिए सुरीला गीत।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म रिलीज हुई थी 1968 में और इसमें धर्म जी का साथ दिया था अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने। इस खूबसूरत गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और हमारे लिए इस गीत को गाया मिलिंद पंडिता ने। आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं सुरीले सिंगर प्रोग्राम जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आज के सुरीले सिंगर शिकागो यूएसए से मिलिंद पंडित। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे वो साज न दो।

किस कदर जल्दी किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा ये ना सोचा तुमने। मुकेश जी की आवाज इस गीत में फिल्म दिल भी तेरा और हम भी तेरे के लिए संगीत रहा था। इसमें कल्याण जी आनंद जी का और शमीम जयपुरी का संगीत इस गीत में, और सच में रात को इस गीत को सुन के हमें धर्म जी की याद बरबस आ ही जाती है, यदि आपने उस फिल्म को देखा हो, सोचा हो, सुना हो। बहुत खूबसूरत गीत हमारे लिए लेके आए मिलिंद पंडित। सुरीले संगीत प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, आपकी आवाज आपकी पहचान। और एक ऐसा गीत जिसके बगैर धर्म जी को ये प्रोग्राम पूरी तरह समर्पित नहीं होता।

ये बताने की जरूरत नहीं कि इस फिल्म में धर्म जी के साथ कौन ड्रीम गर्ल थी, और वो ड्रीम गर्ल आज भी है धर्म जी की ड्रीम गर्ल। बहुत ही खूबसूरत गीत को आनंद बख्शी साहब ने लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीत रहा इस फिल्म में, और सच में ये अमर गीतों में से एक गीत हो गया। धर्म जी की याद जब भी हमें आएगी, ये गीत हमें सच में उनके होने का एहसास दिलाएगा। मिलिंद पंडिता लेके आए हैं धर्म जी के अभिनीत गीतों को इस मंच पर सुरीले सिंगर प्रोग्राम में। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आइए सुनते हैं। एक और सदाबहार अमर गीत जिसे जब भी आप सुनेंगे

0: ए यार ए हुस्न वाली, जीने दे या मार डाले। आज मौसम बहुत बेईमान है। फिल्म लोफर का ये गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है। रफी साहब ने इसको आवाज दी थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इसको संगीतबद्ध किया था और ऑन स्क्रीन धर्म जी के साथ मुमताज, जी हां मुमताज ने इस गीत को धर्म जी के साथ गाया था। खूबसूरत गीतों का और धर्म जी की यादों का गीतों के साथ ये सिलसिला यहीं संपन्न होता है, लेकिन हम मिलिंद जी के लिए कहना चाहेंगे, चाहे वो किशोरदा की आवाज हो, चाहे मुकेश साहब की या फिर हेमंत दा की, सभी आवाजों को आपने अपनी एक आवाज में सभी गीतों को पिरोया और इस मंच तक संजो के लाए, उसके लिए शिकागो से हमारे लिए मिलिंद पंडित को हम कहेंगे शुक्रिया, करम मेहरबानी। एक बार फिर जाते हुए इस वर्ष की कसक में ये जख्म हमारे लिए हमेशा आवाज के साथ, गीतों के साथ बना रहेगा। मिलिंद जी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आपने सुना प्रोग्राम सुरीले सिंगर। और अब हमें अनुमति दें, नमस्कार।
1: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
3: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
2: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
3: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
2: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ आ गए?
3: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: अच्छा,
3: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
2: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
3: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
2: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
3: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
2: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
3: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
4: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
5: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण, जयपुर रेडियो
1: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।

0: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
2: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
1: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
2: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
1: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
2: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा,
2: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
1: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
2: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
1: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
2: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
1: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
2: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
3: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
0: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
4: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
0: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
5: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो के जगमगाते प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू की अगली कड़ी। आज की गायिका की तारीफ करना मुझे बहुत मुश्किल सा लग रहा है। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मासूमियत है और उनके गले में जैसे माँ सरस्वती का निवास है। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी झिलमिलाती शख्सियत से जो अपनी चमक भर से हमारे दिलों में खुशियां भर देती है। ऋतु, हमारे डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में बहुत स्वागत है आपका।
6: बहुत बहुत धन्यवाद सपना दीदी कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार कि वो अपना कीमती समय दे रहे हैं मुझे सुन रहे हैं।
5: ये मैं तो कहूंगी कि ये हम सब की खुशकिस्मती है कि आप जैसी कलाकार हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में है और हमें आपके गाए हुए बहुत से बड़े ही प्यारे प्यारे और खूबसूरत गीत सुनने को मिलेंगे। तो ऋतु, आप का मायका यूपी से है और इस वक्त आप गुड़गांव में रहती हैं। तो दोनों शहरों में देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है, एक बड़ा शांत सा है, एक कॉरपोरेट हब है, दोनों की चाल ढाल, दोनों के खान पान बहुत फर्क रहता है दोनों में। तो आप किस शहर के ज्यादा करीब अपने आप को मानती हैं और क्यों, और इसके साथ ही हमारे सुनने वालों को कुछ अपने बारे में भी बताइए।
6: जी बिल्कुल, जैसा कि मेरी पैदाइश यूपी में हुई है
5: जी,
6: और तो एक अलग ही लगाव होता है जहाँ भी हम पैदा होते हैं उससे। तो
5: बेशक
6: मैं कहूँगी कि अभी भी यूपी में बहुत अपनापन है, वहाँ लोग जब भी मिलते हैं तो निक लगाव देखने को मिलता है, बहुत मिठास है वहाँ की बोली में, और अभी भी वहाँ का जीवन बहुत सरल है। और गुड़गांव में शादी के बाद जैसे यहाँ पर आ गई हूँ तो ये बहुत ही मॉडर्न एडवांस शहर है, यहाँ पर आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है।
5: जी जी,
6: और यहाँ लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत फास्ट लाइफ है,
5: बहुत फास्ट
6: लेकिन
5: है।
6: जी, लेकिन फिर भी वो टाइम निकालते हैं, मिलते जुलते हैं।
5: जी जी,
6: और जगह जगह
5: अपनी तरफ से कोशिश तो करना ही पड़ती है ना हमेशा।
6: और जैसे ना यहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग स्टेट के जगह जगह के लोग आते हैं
5: जी,
6: और उनके अलग अलग सपने होते हैं, तो ये शहर उनको मौका देता है उन सपनों को पूरा करने का।
5: अरे वाह, बहुत खूब कहा आपने, बहुत खूब
6: जी।
5: तो अपने परिवार के बारे में बताइए कुछ।
6: जी, मेरा परिवार एक, मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, काफी बड़ा परिवार, बाबा दादी ताऊ चाचा मम्मी पापा, मतलब बहुत बड़े परिवार।
5: अच्छा, तो एक ही घर में रहते थे सारे?
6: जी जी, बहुत बड़ा घर और उसमें बहुत सारे कमरे, सबके अलग अलग कमरे थे। तो बहुत ही अच्छा बचपन मेरा बीता मैं कहूंगी, और जो मेरे संस्कार हैं वो वहीं से मुझे मिले हैं
5: जी,
6: कि सरल रहो, जमीन से जुड़े रहो, बड़ों को सम्मान दो, छोटों से प्यार करो, ये सब मुझे वहीं से मिला है
5: जी। एक्चुअली जो हमारे पहले वाली जनरेशन, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन रही है, वो लोग काफी ज्वाइंट फैमिलीज तब होती थी, और ज्वाइंट फैमिलीज के बहुत से फायदे भी रहे हैं हमेशा ही, है ना। अकेलापन कभी भी महसूस नहीं होता, आजकल की जिंदगी में बहुत अकेलापन है, हर कोई इंसान कहीं ना कहीं अकेलेपन से जूझ ही रहा है।
6: जी बिल्कुल
5: जी, जैसे कि आपने कहा कि सपने पूरे करने के लिए हर कोई गुड़गांव की तरफ रुख करता है या भारत के और मेट्रोपॉलिटन शहरों की तरफ रुख करता है, लेकिन अक्सर वो क्योंकि अपने परिवार को एकदम से ला भी नहीं पाते हैं तो अकेलापन तो रहता ही है।
6: बिल्कुल सही कहा आपने, पूरा मतलब मैं देखती हूँ कि स्ट्रेस ही भरा हुई है लाइफ में आजकल की जो भी लाइफ है
5: जी।
6: बट हम जब छोटे थे तो ये सब तो हमें पता ही नहीं था कि स्ट्रेस होता क्या है,
5: अरे कभी अपने
6: पेरेंट्स में भी नहीं देखा
5: जी, बिल्कुल,
6: कि वो कभी परेशान है, कुछ परेशानी है, सब आपस में मिलके बांट लेते थे, सारे दुख बांट लेते थे। तो बहुत ही अच्छी, मैं कहूंगी मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता है
5: जी। जी नहीं, वो आपके चेहरे से भी झलकता है ऋतु में, तो हालांकि आप एक इंट्रोवर्ट हैं, बट फिर भी आपके जो चेहरे पर जो खिलखिलाती सी हंसती सी मुस्कुराहट रहती है वो बहुत ही आकर्षक है। तो आपके चेहरे से पता चलता है कि आपका जो बचपन रहा है बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं, क्या सुनवा रही हैं आप?
6: चार ही लाइन गा दूं तो चलेगा?
5: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हम तो आपको लाइव सुनना चाहते हैं, पर वक्त का तकाजा है, हम सारा प्रोग्राम लाइव नहीं कर पाएंगे, आप प्लीज जरूर सुनाइए
6: जी। बिल्कुल

0: हम जैसे मैं मेरी जनरेशन में 5 बहनें हैं,
1: अच्छा
0: सारी कजिन्स और रियल सिस्टर मिला के,
1: अच्छा
0: तो वही गुरुजी आते थे हमें सिखाने।
1: अच्छा
0: तो 2-2.5 साल की उम्र से हमें बैठा दिया जाता था हारमोनियम तबले और तानपुरे के साथ कि ये सीखो गुरुजी के साथ।
1: क्या बात।
0: तो काफी छोटी उम्र से हमने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया, गुरुजी के साथ अलंकार लिया, फिर वो राग तान आलाप सब में सिखाते गए और हम सीखते गए। तो मैंने सीखा हुआ है, बट यही है कि जब तक छोटे क्लास में थे तभी तक वो हो पाया। जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में आते गए वैसे वैसे फिर वो कम होता गया और धीरे धीरे एकदम बंद भी हो गया। लेकिन वो जो सीखा है बचपन का वो आज भी काम आता है।
1: जी
0: आज भी वही जी
1: जी वो आपके सारे गीतों में झलकता है ऋतु। आपके साथ जब मैं भी गाती हूँ या बाकियों को सुनती हूँ आपके साथ, तो फर्स्ट पता चलता है कि आपको संगीत की समझ है, कहाँ पर क्या करना है। बड़े प्यार से, बड़ी एफर्टलेसली वो आप ले जाती हैं वो हरकत, तो वाकई हाँ जी जाहिर होता है। तो संगीत के साथ साथ क्या आपने कोई और भी रुचि रखी है बचपन में?
0: ऐसे मुझे डांस भी बहुत पसंद है लेकिन कभी सीखा नहीं।
1: अच्छा,
0: और
1: अच्छा।
0: बहुत शाय हूँ तो ऐसे सबके सामने करती भी नहीं हूँ, बट हाँ मुझे डांस का भी शौक है और स्टेप में जल्दी सीख भी जाती हूँ देखकर।
1: अच्छा,
0: तो वो
1: अच्छा।
0: भी एक शौक है।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई।
0: और मैं प्राणी हीलर भी हूँ, प्राणी हीलिंग का कोर्स किया है।
1: अरे वाह।
0: तो ये एक डिस्टेंस थेरेपी होती है, इसमें आप दूर बैठे किसी की भी फोटो बस आपको पता होनी चाहिए
1: जी,
0: आप स्कैन कर सकते हो, हील कर सकते हो,
1: जिसको रेकी भी कहते हैं।
0: नहीं रेकी अलग है, उसमें आप मतलब छू कर करते हो।
1: अच्छा,
0: दूर से नहीं करते हो।
1: अच्छा,
0: बट इसमें अगर कोई यूएस में भी है और उसकी फोटो मेरे पास है
1: हाँ,
0: तो मैं उसको भी स्कैन कर सकती हूँ, हील कर सकती हूँ, हीलिंग दे सकती हूँ।
1: अरे वाह।
0: तो वो स्कैनिंग आज भी मेरे काम आती है, हीलिंग तो उतनी काम नहीं आती, मैं उतनी हीलिंग नहीं दे पाती, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। बट मैं किसी को भी स्कैन करके बता सकती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है इस
1: अच्छा।
0: तरह से। तो मेरी फ्रेंड्स आती हैं कि देख मुझे थायराइड हो रहा है क्या, देख मुझे शुगर
1: अच्छा,
0: आ रही है क्या,
1: अच्छा,
0: तो मैं वो स्कैन करके देख सकती हूँ, उनको छूने की भी जरूरत नहीं है, वो फोन करके बोलती जरा मेरी स्कैनिंग कर दे।
1: मुझे लग
0: तो
1: रहा है आपकी बातें सुनकर ऋतु कि हमारे श्रोता आज के प्रोग्राम के बाद ना सिर्फ आपकी गायकी की तारीफ करने वाले हैं बल्कि हमें बहुत सारे फोन आने वाले हैं कि जी ऋतु जी को हमारी पिक्चर भेज दीजिए, हम भी स्कैन करवा के पूछना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी चल रही है, कोई बीमारी तो नहीं हमें। तो बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी की मल्लिका हैं आप। इसी के साथ आपका दूसरा गीत लेते हैं।

0: तो वैसे आप गृहिणी हैं, बड़ी ही कुशल गृहिणी हैं और आपको मेहमान नवाजी का भी बहुत शौक है, आप कुकिंग में भी बहुत ज्यादा आप शौक रखती हैं। मैंने तो आपके हाथ का बना हुआ खाना बड़े ही स्वाद के साथ चखा भी हुआ है। तो कहते हैं कि जो गृहिणी होती है वो परिवार की रीढ़ होती है, उसकी मेहनत, समर्पण, त्याग, यही घर का हर कोना खुशियों से भर देता है। तो आप अपने परिवार की रीढ़ है बेशक, तो आप किस इंसान को अपनी रीढ़ मानती हैं? किस इंसान को आप किस इंसान के बारे में आप ये कह सकती हैं कि वो आपका मनोबल बांधे रहता है, हमेशा सपोर्ट करता है? किसको श्रेय देती हैं अपनी ये सारी पॉजिटिविटी का, जहां पर आप जिंदगी में जिस मुकाम पर आई हैं वहां तक आने का?
1: जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं ईश्वर, गुरुजी, माता पिता को ही धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे सबसे पहले जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो उनका ही हुआ है।
0: जी जी।
1: और उसके बाद मैं कहूंगी कि मेरे हस्बैंड अनुराग का बहुत सपोर्ट है मुझे, हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं।
0: बेशक,
1: बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा मनोबल बढ़ाया
0: जी।
1: और हमेशा इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो मैं कहूंगी कि वही मेरी रीढ़ है, मुझे आगे बढ़ने को हमेशा प्रेरित करते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात बोली आपने ये। और मैं चाहूंगी कि जो आपका अगला गीत है वो आप अनुराग जी को ही डेडिकेट करके हमें सुनवा दीजिए।
1: जी बिल्कुल।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत रहा ऋतु, मजा आ गया सुनकर। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगी कि जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए आप कुछ दो शब्द कह के जाइए।
1: सबसे पहले आपको फिर से धन्यवाद दूंगी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: मुझे भी
1: बहुत अच्छा लगा। और मैं बस यही कहूंगी कि आज की जो इस भागती दौड़ती जिंदगी है, इसमें सभी भाग रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को मत भूलिए, अपने शौक को जिंदा रखिए, उसको भी समय दीजिए, क्योंकि यही शौक, यही पैशन, यही जुनून हम एक इंसान बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: अदरवाइज हम सब एक मशीन ही बन के रह जाएंगे। अपने शौक को जिंदा रखिए।
0: जी, जैसे कि आपने इतने संघर्षों के बाद भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने आप को संगीत से जोड़े रखा है,
1: तो
0: जी ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को महत्व दें। हम अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को तो महत्व देते ही हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो अपनी अपनी खुशियों का, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे पहले जो कि हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखना है, उसको कभी भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, और खुद से सबसे पहले प्यार करना चाहिए।
1: जी,
0: तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जश्न सितारा गीत गुफ्तगू की सितारा ऋतु वर्मा गुड़गांव से। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता, और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ। तब तक डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।

मैं आवाज हूँ तो मेरा। इस प्रोग्राम का सबसे ताजा तरीन एपिसोड लेके हम हाजिर हैं और हमारे संग है, हमारे साथ हैं अर्चुरानो 16 यानी अर्चना अग्रवाल और मेल सिंगर अनुराग। आप दोनों का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है इस खास आयोजन में। आवाज, गीत और संगीत, इन तीनों से हो जाए जब प्यार, या यूं कहें कि इन तीनों का जब हो जाए मेल तो उसको क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे सच में योग। क्योंकि हम गाते हैं तो हमारी धड़कनें, हमारी सांसें जो संगीत के साथ चलती है, रुकती है, ठहरती है और जो व्यायाम करती है, वो सच में योग ही तो है। आपने सोचा कभी इस तरफ? तभी तो संगीत को एक तरह की थेरेपी कहा जाता है। योग दिवस है, संगीत का दिन है और ये सारी चीजें हम उनसे सीखते हैं जो या तो पिता होते हैं या पिता तुल्य होते हैं। तो आज एक साथ इतनी सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं आपके साथ, आप समझ ही रहे होंगे। इसलिए अर्चुरानो 16 क्या कह रही हैं अपने पहले इस सुरीले सॉन्ग में, आइए सुनते हैं। सिंग फॉर पीस साथ दे रहे हैं अर्चुरानो का।

तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। और हम ये कहते हैं योग दिवस पर कि तुम जो योग करोगे संगीत का, तो सच में सांस को रोक लोगे, और सांस को रोक लोगे तो आपकी उम्र लंबी होगी। इसलिए गीत बहुत जरूरी है, संगीत बहुत जरूरी है। ये ऐसी दवा है जिसे खाना नहीं पड़ता, गाना पड़ता है। और आप गा सकते हैं तो इस मंच पर आ सकते हैं। अचुरानो और सिंग फॉर पीस की आवाजों में आपने सुना ये सुरीला नगमा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। आवाज की बात, गीत की बात, संगीत की बात। और मिल जाएं इस तरह जैसे दो लहरें हो उस तरह, लेकिन मिलना, और मिलने का नाम ही तो योग है, और वो आसान नहीं है। उसके लिए कुछ श्रम करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और गीत के माध्यम से मेहनत कर रही हैं हमारी जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुरानो 16। और अगले गीत में कह रहे हैं मनोज जोली अर्चुरानो के संग, मंजिलें मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। आइए सुनते हैं।

चुरानों का साथ दे रहे थे मनोज चोली। और अब इस मंच पर आ गए हैं अचुरानू 16 का साथ देने इस गीत में राम जायसवाल। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा।

इसलिए हम कहते हैं कि यदि आप योग करेंगे तो फिट रहेंगे, जवान रहेंगे, और जवान रहेंगे, फिट रहेंगे तो गीत गाएंगे और गीत हम तक पहुंचाएंगे, गीत सुनाएंगे। आपको शुभकामनाएं गीतों के लिए, आज के दिन के लिए। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। और अब अचुरानू के संग बबलू आर्या।

बबलू आ रही है और अचुरानो 16 की आवाजों में आपने सुना ये सुरीला सॉन्ग। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, पर तेरे बगैर

और गीत भी गाना है और गुरु मंत्र को दोहराना है तो सच में जरूरी है, बहुत जरूरी है योग करना। आज का ये प्रोग्राम योग दिवस को समर्पित था और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर जिसे आप अनुराग के नाम से जानते हैं। गीतों के प्रति अनुराग, उनका प्यार देखते देखते इतना बढ़ गया है कि अनुराग से सच में उनको राग कहने का मन करता है। जो गाने का अंदाज आया है, जो गाने की अदाई है, उसको हमारी तरह आपने भी महसूस किया होगा। आइए सुनते हैं अनुराग का, इस प्रोग्राम का पहला गीत।

चांदनी रात है तू मेरे साथ है और गीतों की बात है और आज हम गीत सुना रहे हैं आपको जयपुर रेडियो के प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के मेल सिंगर अनुराग सेना की आवाज में।

सपना वो हो जाए पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है और ये दुआ कर रहे हैं इस मंच पर अनुराग, इस मंच के मेल सिंगर। प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और इस मंच पर गीत लेके आते हैं अनुराग और अर्चुरानो 16। आपकी आवाज, आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड का ये सुरीला मंच हमारे श्रोताओं के लिए। आइए सुनते हैं अगले गीत में क्या कहने जा रहे हैं अनुराग।

कि कुछ नहीं, सिर्फ योग करने की जरूरत है, योग से सारे इलाज हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और इस मंच पर आवाज है जिसे आप सुन रहे हैं अनुराग सिन्हा की। आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुने अगली गजल, आवाज अनुराग की।

बन जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। अनुराग गा रहे थे ये सुरीली गजल। कैसी लगी आपको अनुराग की आवाज? आपकी आवाज आपकी पहचान। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। और ये गम का गीत नहीं है और ना ही छुपाने वाली बात है, क्योंकि हम इस मंच पर आपके साथ हैं जिस का नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के हमारे दुए मेहमान अर्चुरान 16 और अनुराग का हम करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और कहते हैं सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार आपकी आवाज आपकी पहचान। हमें अनुमति ने इस प्रोग्राम से बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आप सबके लिए और आज के लिए ये गीत।

ग्लोबल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो के जगमगाते प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू की अगली कड़ी। आज की गायिका की तारीफ करना मुझे बहुत मुश्किल सा लग रहा है। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मासूमियत है और उनके गले में जैसे माँ सरस्वती का निवास है। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी झिलमिलाती शख्सियत से जो अपनी चमक भर से हमारे दिलों में खुशियां भर देती है। ऋतु, हमारे डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर